ये जो आपका गला चमक रहा है ना, मुझे दूर से नजर आ रहा है। आई नो आप ना गोल्ड को सिर्फ एक अटायर की तरह नहीं लेते हैं, एक ज्वेलरी की तरह नहीं लेते, एक इन्वेस्टमेंट की तरह लेते हैं, राइट? सो दिस इज द हाई टाइम जब आप मतलब गोल्ड इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, एंड डेफिनेटली शगुन माना जाता है फेस्टिव डेज के आसपास अगर आप ये लेंगे। तो अगर हम सबसे बेस्ट प्रोमिसेस के और बेस्ट ऑफर्स की बात करें तो जोया लुकास लेकर आ चुका है गोल्ड ज्वेलरी मेकिंग चार्जेस पर सिर्फ 1% के मेकिंग चार्जेस ऑनवर्ड्स। आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। प्री बुक कीजिए अपनी ज्वेलरी और लोएस्ट गोल्ड रेट जो है वो आप 10% एडवांस देके प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो वो ऐप ऑफर भी चल रहा है इनके में। अगर आप पहली बार इनके यहाँ बुकिंग कर रहे हैं तो जोया लुकास का मोबाइल एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है, उसके बदले में आपको 100 सिंगापुर डॉलर का डायमंड गिफ्ट वाउचर भी गिफ्ट मिलेगा। सो एडवांस बुकिंग कीजिए, टिल 7 नवंबर ये ऑफर्स आपका इंतजार कर रहे हैं। TNC अप्लाई। जोया लुकास के शोरूम पहुंचिए और सुनते रहिए रेडियो मसी 24/7 लाइव। मैं RJ नुपुर आपके साथ।

0: Some invitations are simply too stylish to miss. This October, High Life Exhibition returns to Singapore, bringing you a curated world of Indian fashion and lifestyle. Discover festive wear, bridal couture, jewelry, accessories and home decor from designers across India and Singapore. 13th and 14th October, 10 a.m. to 8 p.m. at Holiday Inn Singapore, Orchard City Centre. High Life Singapore, 2 days, endless style, one destination.
1: It's a musty partner event.
0: Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वी आर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।

0: अप
1: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर
2: नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर सुन टकाटक जोश में रहो।
3: ये जो बचपन वाली डांट है ना, ये कोई जगह है ये बात करने की? हाँ, ये कोई जगह है ये सब करने की? हाँ, मतलब अक्सर पड़ जाती थी यार, जब घर वालों से हम लोग शॉपिंग पे जाते थे और जबरदस्ती कोई डिमांड कर देते थे तो घर वाले भी बोल देते थे ये कोई जगह है जिद करने की, घर से समझा कर तुम्हें लाए थे कि बस यही खरीदेंगे तो फिर क्यों क्यों ये सब हो रहा है। हाँ, मतलब जिन लोगों को इन टॉपिक्स पे डांट पड़ी है ना, वही इन डांट को समझ सकते हैं। रेडियो मस्ती 24/7 पर मैं आरजे नुपुर आपके साथ एंड आप सुन रहे हैं मस्ती मॉर्निंग शो। सो होता है डांट पड़ने का असर ना लंबा चलता है, और अब जो पेपरासी फोटोग्राफर्स हैं या वो मीडिया स्पोक पर्सन्स जो कहीं भी कुछ भी सवाल पूछ लेते हैं ना सेलेब से, उनकी जो चाबी है वो थोड़ी सी टाइट करी जा रही है। अब कहेंगे कैसे, रिसेंटली गोविंदा की जो बेटी है ना टीना आहूजा, वो किसी इवेंट पे पहुंची हुई थी, कुछ अलग तरह का माहौल था, कुछ अलग ही चीज़ें थी, और लोगों ने उनसे पूछ लिए सवाल उनके पापा से जुड़े हुए कि क्या लगता है आपके फादर साहब गोविंदा जी का नाम जो है वो कोमल नाम की एक से जोड़ा जा रहा है। तो उन्होंने भी बोल दिया ये वाली जगह पर आप ये सवाल पूछेंगे, ये वाली जगह पर, और वो चली गई। सो डेफिनेटली ये पेपरासी कल्चर धीरे धीरे समझ में नहीं आ रहा है लोगों को। देखते हैं चलता है तो कितना चलता है, टिकता है तो कितना टिकता है। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं आरजे नुपुर आपके साथ।

0: सुन टकाटक।
1: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान। जोश में रहो।
2: यार हम लोग की आदत है एक नहीं दो नहीं 10 दुकानें देखने के बाद ही 11वीं दुकान से कुछ खरीदते हैं। हाँ तो अब आपके पास ना 75 ऑप्शंस मैं दे रही हूँ, 1 to 75 ऑप्शंस आप एक्सप्लोर कीजिए, उसके बाद जो आपको सबसे बेस्ट लग रहा है ना वहां से कपड़े पिक कीजिए। हाँ एक्चुअली देखो बात ऐसी है, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं आरजे रुपर आपके साथ, एंड बहुत जल्द सिंगापुर में आ रही है हाई लाइफ एग्जिबिशन जिसमें 75+ लीडिंग इंडियन डिजाइनर्स जो हैं वो लाइफस्टाइल कलेक्शन से लेकर डेकोर कलेक्शन से लेकर लग्जरी से जुड़े हुए हर एक प्रोडक्ट शोकेस करने वाले हैं। सो दिस 13th and 14th October आपको अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकालना है, सुबह 10 से शाम के 8 बजे के बीच हॉलीडे इन ऑर्चर्ड सिटी सेंटर आपको पहुंचना है, और वहां पे आप ब्राइडल कलेक्शन हो गया, फेस्टिव कलेक्शन हो गया, ब्राइड मेड कलेक्शन हो गया, हर तरह के ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकते हैं। डेफिनेटली पहुंचिए और थैंक्स मी लेटर। रेडियो मसी 24/7 लाइव पर मैं आरजे नुपुर आपके साथ।

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर। समटाइम्स जो दिख रहा है ना उसे एंजॉय कर लेना चाहिए, ना कि उसे कोई प्लॉट समझ के, कहानी समझ के स्ट्रेच करना चाहिए। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं आरजे नुपुर आपके साथ, और मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आप अपनी लाइफ में खुश रहना ज्यादा पसंद करोगे या फिर बैंक बैलेंस बढ़ाने में ज्यादा फोकस करोगे? ऑफकोर्स खुश रहना ही ना बहुत ज्यादा प्रेशियस होता है, मतलब आप इसे बैंक बैलेंस से कंपेयर नहीं कर सकते, ये कंपैरिजन ही खराब है। बट स्टिल लोग जो हैं इन बातों को लेकर आते हैं, बात बात पे इसका जिक्र कर देते हैं। एंड यू नो व्हाट, बिपाशा बासु जो एक टाइम पे वन ऑफ द ऐसी बॉलीवुड एक्ट्रेस थी जो हर तीसरी मूवी में नजर आ रही थी, उनकी खूबसूरती किसी से नहीं छुपी थी, उनके नाम के ऊपर यार गाना बना हुआ है, और क्या क्या क्या इनके अचीवमेंट्स रहे, राइट? सो रेडियो मस्ती पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि रिसेंटली एक वीडियो वायरल हुई जिसमें बिपाशा बासु जो है ना वो अपनी छोटी सी बेटी के साथ ना खेलती हुई नजर आ रही है, और बहुत ही प्यारी वो वीडियो निकल कर आ रही है। मतलब वो अपना मदरहुड प्रॉपर इंजॉय कर रही हैं यार, प्रॉपर इंजॉय कर रही हैं। एंड ये वीडियो देखने के बाद पब्लिक कन्विंस हो गई कि यार ये लड़की ने अगर मूवीज छोड़ी है ना तो शायद अपनी लाइफ को इंजॉय करने के लिए ही छोड़ी है, ना कि किसी और वजह से। और हर बार हर चीज की कीमत नहीं होती है, मदरहुड जो फेज है ये लाइफ में दोबारा नहीं आता है, एंड स्टार्टिंग फेज तो और भी ज्यादा स्पेशल होता है, राइट? सो रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर बातें और गाने लगातार मेरी जान, डोंट गो एनीवेयर, आती हूँ मैं इन अ शॉर्ट व्हाइल।
1: दिस इज रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, द ओनली लोकल कनेक्ट विद ग्लोबल एक्सपैट इंडियंस, एनीटाइम एनीवेयर।

0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने ये जो ऑनलाइन गरबा की ड्रेसेस एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया है, तो ये क्या सिर्फ अपने आसपास छोटे मोटे इवेंट्स में पहनोगे या फिर अपने दोस्तों के साथ बस घूमने जाओगे तब पहन लोगे? नहीं ना, आपको कोई बड़े इवेंट का इंतजार है, बड़ा कोई गरबा, आपको एक ग्रुप चाहिए जहां पे आप एक ऑथेंटिक गरबा एक्सप्लोर कर पाए, राइट? तो देखिए, हर बार की तरह सिंगापोर का ट्रूली ओरिजिनल नवरात्रि सेलिब्रेशन होने वाला है, जो कि आपके लिए लेकर आए हैं सिंगापोर गुजराती कम्युनिटी, राइट? 16, 17 and 18 अक्टूबर ये होगा लगूना बॉल रूम थानी लगूना, 11 लगूना गोल्ड ग्रीन सिंगापोर में। सो फ्राइडे सैटरडे एंड संडे तीन दिन है, 16, 17, 18 तारीख, एंड टिकट्स जो है डेफिनेटली बहुत जल्द खत्म होती जा रही हैं। आपको क्विकली अपनी टिकट्स ग्रैब करनी है sgs.org.sg/navratri2026 पर, और वहां पे आपको मल्टीपल कॉन्टैक्ट नंबर्स भी मिल जाएंगे ताकि आप डिटेल्स जान पाए। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं आरजे पर आपके साथ, डोंट गो एनीवेयर मेरी जान।
1: माड़ी मेलोडी, माड़ी जगत जननी,
2: तैयार हो जाइए जब ढोल बजेगा, डांडिया खनकेगा और पूरा सिंगापुर बोलेगा
1: हेरमते आवे माड़ी।
2: इट्स टाइम फॉर सिंगापुर गुजराती सोसाइटी प्रेजेंट्स सिंगापुर्स ट्रूली ओरिजिनल नवरात्रि। 16th, 17th and 18th October at the new grand and stunning Laguna Ballroom, Dusit Thani Laguna. Three spectacular nights of Garba Dandiya tradition and celebration. Complimentary shuttle available too. Tickets $25 onwards almost sold out, but you can still win yours with Masti. Book now at sgs.org.sg/navratri2026. Singapore Gujarati Society presents Singapore's truly original Navratri. Tradition, togetherness, celebration.

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर
1: नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर सुन जोश में रहो।
2: जैसे हमारी लाइफ में एक क्लाइमेक्स होता है ना कि कल के दिन में हमारे संग क्या होने वाला है, परसों क्या होने वाला है, 10 दिन के प्लान्स हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, ईयर एंड के जो गोल्स थे वो हम बीट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो ये जो क्लाइमेक्स फैक्टर है ना अब हर किसी को पसंद आने लगा है। अगर ये मूवी में भी क्लाइमेक्स बार बार दिखाया जाए तो मजा ही आ जाए। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं आरजे नुपुर आपके साथ। एंड डेफिनेटली एक टाइम पे कहा जा रहा था कि कॉमेडी मूवी और डांस रिलेटेड मूवी, किसी की लाइफ के ऊपर बेस्ड मूवी, या फिर आप कह सकते हैं घर घर की कहानी टाइप ऑफ मूवी, या फिर रोमांटिक मूवी चल रही थी। लेकिन मैं बोल रही हूँ कि अभी आज के टाइम पर क्लाइमेक्स से भरी हुई थ्रिलर मूवी सबसे ज्यादा पॉपुलर है। एंड इसका परफेक्ट एग्जांपल अगर एकदम ताजा ताजा देखें तो दृश्यम मूवी का तीसरा पार्ट वर्ल्ड वाइड 300 करोड़ प्लस का बिजनेस कर चुका है। सो डेफिनेटली पब्लिक जो है ना वो क्लाइमेक्स की तरफ खिंच रही है, सरप्राइजेस की तरफ खिंच रही है। हाँ, और अजय देवगन का सिंघम के बाद अगर कोई सीक्वल्स, प्रीक्वल्स और बैक टू बैक खिंच रहा है वो है दृश्यम मूवी। चलो ठीक है, इसी बात पर तारीफ के पुल बांधने के लिए कुछ और भी गाने कर रहे हैं आपका इंतजार। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं आरजे नुपुर।
3: This is Radio Masti 24/7 Live, the only local connect with global expat Indians. Anytime, anywhere.

0: तैयार हो जाइए जब ढोल बजेगा डांडिया खनकेगा और पूरा सिंगापुर बोलेगा इट्स टाइम फॉर सिंगापुर गुजराती सोसाइटी प्रेजेंट्स सिंगापुर्स ट्रूली ओरिजिनल नवरात्रि 16th, 17th and 18th October at the new grand and stunning Laguna Ballroom, Dusit Thani Laguna. Three spectacular nights of Garba Dandiya tradition and celebration. Complimentary shuttle available too. Tickets $25 onwards almost sold out, but you can still win yours with Masti. Book now at sgs.org.sg/navratri2026. Singapore Gujarati Society presents Singapore's truly original Navratri. Tradition, togetherness, celebration. ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
1: इमेजिन आप शॉपिंग करेंगे, खर्चा करेंगे और बदले में आपको कैशबैक मिलेंगे, प्राइजेस मिलेंगे और एक क्वालिटी टाइम भी मिलेगा। क्या बात है यार, तब तो सुबह से शाम शॉपिंग करना है तो अकेले क्यों करना है, हस्बैंड को ले जाओ, अपने पार्टनर को ले जाओ, अपने घर वालों को

0: बदले में आप मोबाइल फोन, क्रूज की ट्रिप, इवन ट्रिप टू दुबई, लंदन, पेरिस, रोम या न्यूयॉर्क भी जीत सकते हैं। सो बहुत सारी आपको एग्जीबिशंस में वैरायटी मिलेगी, दिल्ली की, मुंबई की, चेन्नई की, जयपुर, कोलकाता, हैदराबाद, कश्मीर, पंजाब और भी मल्टीपल सिटीज की। डेली बहुत सारे प्राइजेस हैं, रंगोली कॉम्पिटिशंस हैं एंड आपके बच्चों के लिए एक प्ले जोन है, बहुत कुछ है। तो एक्सप्लोर दैट रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। मैं आर चिल्लू पर आपके साथ, डोंट गो एनीवेयर।
1: इस दीपावली शॉपिंग भी, सेलिब्रेशन भी और एक्साइटिंग प्राइजेस जीतने का मौका भी। Zaxxalon India, the Family Expo is back with its grand 43rd edition celebrating 20 amazing years. Enjoy 10 days of Deepavali discounts, Indian shopping, delicious food, competition stanya, cultural entertainment and family fun. 16th to 25th October at Hall 9, Foyer 3, Singapore Expo Mein. Entry is free, free, free. So bring your family and celebrate the spirit of India at 43rd edition of Zaxxalon India, the Family Expo. The biggest Deepavali discount sale of the year. For more info, log on to www.zaxxalonindia.com.

0: सुन टकाटक।
1: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान। यू नो व्हाट, आप धीरे धीरे से उस चीज की वैल्यू समझते हो जो चीज आप अंडर एस्टिमेट कर चुके हो। मतलब फॉर अ वाइल आप एकदम लेट मॉर्निंग पर्सन हो, ठीक है, आपकी लाइफस्टाइल कुछ भी चल रही है, आपने कुछ भी जो एथिक्स है ना उनको फॉलो नहीं किया है। क्यों? क्योंकि आपका मन नहीं करता है यार। ऐसा नहीं है कि आपकी कोई और वजह है, बस आपका मन नहीं करता है। लेकिन फिर अचानक से आप अर्ली मॉर्निंग पर्सन बन गए एंड अर्ली टू बेड पर्सन बन गए, अपनी लाइफस्टाइल पूरी तरीके से आपने बदल दी, एकदम अच्छे इंसान बिल्कुल बढ़िया वाले बन गए, तो आपको कुछ अलग लगेगा ना। हाँ, तो डेफिनेटली अगर हम एक्टर विद्युत जामवाल की बात करें, जिन्होंने बॉलीवुड में अपनी बॉडी शॉडी से बहुत सारी एक्शन मूवीज में काम कर लिया है और उसी के लिए ये बहुत फेमस भी है, बिकॉज ये रफली बहुत कुछ एक्सरसाइज करते हैं, जंगल में रहते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत कुछ निकल कर आया है। लेकिन इस बार ये हॉलीवुड में भी नजर आने वाले हैं। स्ट्रीट फाइटर मूवी के ट्रेलर में ये नजर आए हैं और इसके ट्रेलर लॉन्च में जब ये पहुंचे तो इन्होंने 15 मिनट तक अपनी सांस रोक कर एंड उस एनवायरनमेंट में जो चीज़ें चल रही थी ना उसमें ये सारी चीज़ें करके दिखाई हैं। 15 मिनट तक अपनी सांस को रोकना और इस मूवी के कैरेक्टर में रहना, और इनका ये कहना कि जो हॉलीवुड के लोग हैं वो सेट्स पर एकदम पंचुअली टाइम से पहुंचते हैं, ये चीज़ें बॉलीवुड ना कभी कर पाया है और ना कर पाएगा। डेफिनेटली ये कुछ अलग ही दिखा रहे हैं, राइट? तो चलिए, ऑन द स्नो तो बहुत सारी बातें आज तो हो गई और होती रहेंगी, लेकिन अभी के लिए मी आरजे नुपुर साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। मुलाकात होगी बहुत जल्द। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा, अपने को ख्याल रखिएगा और सुनते रहिएगा रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: आरजे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए ड्यूटी पर।
0: Non-stop music, non-stop musty, only on Musty Music Cafe.
2: Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore.

0: करण अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे मस्ती म्यूजिक कैफे।
2: Shows don't just play, they stay with you. And when our listeners ask for more, we bring them back. Encore shows by popular demand. Relive the music, the moments, the magic. Only on Radio Masti 24/7. Check the app menu for Encore show timings.
3: Radio Masti 24/7 Live, a part of Masti Media Network Singapore.
4: महापुरुष
1: वेंसडे को मूड डाउन हो गया, कोई बात नहीं, हमारे पास उसका भी जुगाड़ है। मिडवीक ब्लूज, जहां काम की चिंता छोड़ो और हमारे साथ मस्त हो जाओ। फिल्मी बातें, मस्ती मोमेंट्स, थोड़ा छेड़ना और पंगे लेना भी, क्योंकि लाइफ सिर्फ काम के लिए नहीं है मेरे दोस्त। ट्यून इन एंड पावर थ्रू द वीक विद मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7। आओ मूड चेंज करें।

0: आदाब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: वेयर यू मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर जय

0: जिसकी याद सताए जनाब, अकेलापन रात का तो हम है ना।
1: रात अकेली है।
0: रोज रात रेडियो मस्ती पर 11 बजे से।
2: कभी मेरे साथ कोई रात गुजार। जोश में रहो।
3: मेरे करण अर्जुन आएंगे?
4: ना करण अर्जुन आएंगे, ना ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे।

0: कुछ पुरानी धुने, कुछ भूली बिसरी यादें,
1: किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान,
0: कोई आवाज, कोई साज। सिनेमा की दुनिया के किस्से रुलाते, हंसाते, उदासी भरे, खिलखिलाते किस्से। समर के साथ रेडियो मसी 24/7 लाइव पर लेजेंड्स फिर से।
2: योर मस्ती म्यूजिक कैफे इज ओपन। फ्रेशली ब्रूड बीट्स

0: सिमरन तू आ गई, मैनू तो लग गया तू आना ही नहीं। नाउ चक दे फट्टे एंड बर्न द डांस फ्लोर।
1: डोंट वरी, आज डांस भी होगा और चांस भी।

0: हैंग आउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंग आउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: ओके एवरीबॉडी, हेलो, मेरा एक सवाल है आप सबसे। आपके फोन में भी ऐसे स्क्रीनशॉट्स पड़े हैं क्या जिनका पर्पस अभी तक किसी को भी नहीं पता? किसी रेस्टोरेंट का मेन्यू है, कोई ड्रेस जो कभी तो खरीदनी थी, किसी ने कोई एड्रेस भेजा था, वो एक मोटिवेशनल कोड जो उस वक्त लाइफ चेंजिंग लगा था, आप तो खैर बात छोड़ दो, और बीच में एक स्क्रीनशॉट ऐसा जिसको देखकर आपको लगेगा ये मैंने क्यों ही सेव करा। आपको पता है मेरे फोन में ना पूरी डिजिटल आर्कियोलॉजी चल सकती है, सही बता रही हूँ मैं। और सबसे कमाल की कैटेगरी पता है क्या है? बाद में देखूंगी। बाद में कब? किसी को भी नहीं पता होता। खैर, गैलरी की सफाई हम बाद में कर लेंगे, क्योंकि फिलहाल मैं आ चुकी हूँ आपके अगले 3 घंटे थोड़े और इंटरेस्टिंग बनाने। मैं हूँ मुग्धा आपके साथ, दिस इज मस्ती हैंग आउट ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। और आज का प्लान बहुत सिंपल है, एक जगह टिकना ही नहीं है। सिंगापुर में क्या इंटरेस्टिंग चल रहा है वो जानेंगे, बॉलीवुड की गलियों में जाएंगे, थोड़ा घुसेंगे, दर दर की बातें निकालेंगे, कुछ काम की बातें मिलेंगी, और कुछ ऐसी कहानियां जिनको प्रैक्टिकली आप इस्तेमाल नहीं कर सकते पर सुन के कह सकते हैं ओ माय गॉड ऐसा भी होता है। यस, और वैसे भी फोन में हम कितनी चीजें बाद में देखूंगी ऐसे बोल के सेव कर देते हैं ना। मस्ती के साथ वो गलती नहीं करेंगे। आप सुन रहे मुग्धा को, दिस इज रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। दिन का वीक का वो दिन जहां पर हम इधर दूर इधर पास होते हैं, इधर पास उधर दूर होते हैं ना।

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: हाय सिंगापुर, मैं हूँ मुग्धा आपके साथ। पता है आपको, सिंगापुर ने एक फिल्टर लगा के रखा है। प्रॉब्लम इज कि किसी ने इसको कहा नहीं था और ये कैसे सिलेक्ट हुआ पता नहीं। देखो क्या है ना, बाहर देखोगे तो आपको थोड़ा ग्रे, थोड़ा ब्लर ऐसा सा लगेगा। पहले लगता है यार खिड़की साफ करी क्या, पर नहीं ऐसा नहीं है, दिस इज ऑल हेज। अब जोक से पार्ट, ये जो एयर क्वालिटी है थोड़ी अभी फिलहाल बाहर हेवी फील हो रही है। आउटडोर प्लांट्स में थोड़ा स्मार्ट रहना आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर होगा, स्पेशली अगर आपको कहीं बाहर जो है देर तक बाहर रहना है। तो निकलने से पहले आप PSI और एयर क्वालिटी अपडेट एक बार जरूर चेक करना, उसके बाद ही निकलना। पैनिक नहीं करना है, थोड़ा अवेयर रहना बहुत जरूरी है। एंड हेज को ना, सिंगापुर का जो ये फ्री सिनेमैटिक फिल्टर समझकर आप बाहर निकल रहे हो, प्लीज एक्स्ट्रा आउटडोर्स बिल्कुल अवॉइड करें, दिस इज नॉट एट ऑल सेफ फॉर यू। पर अब आप सोच रहे हैं कि आखिर ये जो है पूरा हेज, ये आया कहां से है, हाउ डिड इट अकर, हमने तो बुलाया नहीं था। ऑफकोर्स हम ऐसी चीजें बुलाते नहीं है। नेबरिंग इंडोनेशिया में जो और सदर्न सुमात्रा में कुछ एरियाज में ड्राई कंडीशंस हैं और वहां से मॉडरेट टू डेंस स्मोक जो है ना वो विंड्स के साथ सिंगापुर की तरफ ड्रिफ्ट कर रहे हैं। फिलहाल फोरकास्ट भी यही कह रहा है कि 24 आवर्स PSI हाई मॉडरेट से मिड अनहेल्दी रेंज में रह सकता है। अगर आप बाहर निकलने का सोच रहे हैं, अगेन आई एम टेलिंग यू, सिंगापुर थोड़ा मिस्टीरियस मूवी सेट जैसा आपको क्यों लग रहा है, ऐसा फील आता रहेगा आपको, और ये धुएं और धुंध में आपको एकदम विक्रम भट्ट की हॉरर फिल्म का फील आएगा। लेकिन हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है, पैनिक नहीं करना है।
2: सिर तो पैरों दे तक ये सब परफेक्ट, पिंड तो शहरों दे तक ये सब परफेक्ट, तेरा किम तो मी गोल लग बस
1: सारे। आउटडोर एक्टिविटीज कम से कम तक करनी है, समझ गए। गुड।

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: हाय एवरीबॉडी, सिंगापुर, दिवाली गिफ्टिंग करनी है, दिवाली की प्लानिंग करनी है और दिवाली सर पे आ चुकी है, क्या करें? मैं हूँ ना, 11th अक्टूबर से पहले जो करना है कर लो। Why? Because शाही महारानी का अर्ली बर्ड वहीं तक है आपके लिए। वैसे तो काफी कुछ है लेकर आ रहे हैं, पर अर्ली बर्ड ऑफर्स जो है ना, ये अर्ली बर्ड ऑफर्स 11th अक्टूबर तक ही है। अब क्या है इसमें? दिवाली फेस्टिव कलेक्शन 2026 में हैंडक्राफ्टेड मिठाई, प्रीमियम सेवरीज एंड ब्यूटीफुल फेस्टिव गिफ्टिंग ऑप्शंस हैं। मिठाई फ्लेवर्स तो भाई बात ही छोड़ दो, आप तो सुने नहीं मैंने कभी वैसे वाले हैं। ट्रॉपिकल सनराइज, मैंगो सरप्राइज, मिल्क केक्स ऑफ कोर्स वन ऑफ माय फेवरेट, स्टफ्ड कैश्यू रोल, ग्राम एंड गुड डिलाइट, स्टेट नट बर्फी, हेल्दी भी है और दिवाली गिफ्टिंग ऑप्शंस एकदम परफेक्ट है। सेलिब्रेशन बॉक्स अवेलेबल है, रॉयल सेवरी ट्रीट्स हैं, रॉयल फेस्टिव बॉक्सेस हैं और प्रीमियम ट्रेजर शुगर एंड स्पाइस बॉक्स भी है, प्लस अर्ली बर्ड भी है। कलेक्शंस 22 अक्टूबर से 9 नवंबर तक हैं एंड मिनिमम 3 डे लीड टाइम के साथ आप चलिएगा। बल्क और कॉर्पोरेट गिफ्टिंग ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। तो अगर आपको अपने ऑफिस में, फैमिली में, फ्रेंड्स में और इधर उधर सब जगह बांटना है, इधर भी भेजना है, तो आपके लिए भी ऑफर है। बट द अर्ली बर्ड वंस सिर्फ 11 अक्टूबर तक है। तो जल्दी जल्दी जल्दी, अर्ली अर्ली, फास्ट फास्ट, है ना, इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको नोट कर लीजिएगा। 11 अक्टूबर तक अर्ली बर्ड है और उसका लास्ट डेट है। दिवाली के टाइम की मिठाई जो है ना, वो बहुत स्पेशल होती है, जब वो शाही महारानी लेके आता है तो वो और ज्यादा स्पेशल हो जाती है।
2: You're tuned into Radio Masti 24/7 live, keeping you connected anywhere, anytime, the desi way.

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: कभी कभी ना किसी को एक बार समझाओ, फिर दोबारा समझाओ, फिर तीसरी बार भी समझाओ और सामने वाला बोले हाँ हाँ ठीक है आप बोलते रहो, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। सिंगापुर में एक 78 ईयर ओल्ड महिला को पिजन्स फीड कराते रहने पर एक भारी भरकम 9,200 सिंगापुर डॉलर का फाइन लगा दिया गया क्योंकि बार बार बोलने के बावजूद वो मान नहीं रही थी, रुक नहीं रही थी। सी अथॉरिटीज ने उन्हें 2021 से रिपीटेडली वॉर्न किया, लगातार वॉर्न किया। 2025 में ऑफिसर्स ने उन्हें पिजन्स को पपाया और बाद में ना फ्राइड राइस भी खिलाते हुए देखा। अच्छा, आपको तो बड़ा स्वाद भी पता है उनका। अब एक इंसिडेंट में उन्होंने ना एनफोर्समेंट ऑफिसर को हिट भी कर दिया। बताओ, कोर्ट में उन्होंने वाइल्ड लाइफ फीडिंग के दो चार्जेस और पब्लिक सर्वेंट पे क्रिमिनल फोर्स का एक चार्ज एडमिट भी किया। क्या महिला है भाई। एंड द इम्पोर्टेंट रिमाइंडर, सिंगापुर में पिजन्स या वाइल्ड लाइफ को फीड कराना वाइल्ड लाइफ एक्ट के अंडर ऑफेंस है, तो तभी तो इनको 2021 से लेके रिपीटेडली मना किया जा रहा था। पर ये महिला मानने को तैयार नहीं थी। बस बस, कभी कभी ना थोड़ा सा खिला दिया वाला जो ये ट्रीटमेंट है ये बहुत महंगा पड़ने वाला है। और जब फाइनली घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो क्या करते हैं, उंगली टेढ़ी और डब्बा भी हल्का सा टेढ़ा। तो आइंदा से अगर आपको पता है कि सिंगापुर में किसी चीज को मना किया गया है करने के लिए, ऑफेंस है वो, क्राइम है, नहीं कर सकते आप, प्लीज 2021 से 25-26 तक मना करते करते जब नहीं मानेंगी, शुक्र है फाइन ही लगाया है। हालांकि भारी भरकम है पर ठीक है, कोई बात नहीं। अब दो, जो नहीं सुनते उनके साथ ऐसा ही होता है, गलत बात है कि भाई मैं तो यही मानती हूँ।

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: हाय सिंगापुर, वेलकम बैक। शो के सेकंड आवर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दीपावली शॉपिंग की लिस्ट बन गई या अभी घर में आपके डिस्कशंस चालू हैं? पहले कपड़े, ज्वेलरी, गिफ्ट या जो सामने अच्छा लग जाए वो ले लेंगे। भाई दिवाली की शॉपिंग के लिए बनाना इतना आसान काम है नहीं, बहुत मुश्किल काम है। वैसे अगर आपको आंसर लास्ट वाला समझ में आ रहा है तो सी, आई हैव समथिंग फॉर यू। जैक सलाम इंडिया द फैमिली एक्सपो का नाम नोट कर लो, बिकॉज दिस इज द प्लेस जहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा। वाई? पहला तो ये ग्रैंड 43rd एडिशन है, और उससे भी बड़ी बात है दिस इज द 20th एनिवर्सरी। पूरे 10 दिन का दीपावली डिस्काउंट सेल यहाँ पे मिल रहा है, एक ही जगह पे एवरीथिंग आपको मिलेगा 16 से लेकर के 25 अक्टूबर तक एट सिंगापुर एक्सपो, हॉल नंबर 9, फ्लाईओवर 3। और हाँ, एंट्री फ्री है। यस, तो भर भर के शॉपिंग करो भाई, क्योंकि एंट्री के पैसे नहीं देने। अब यहाँ पे है क्या? सी, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, जयपुर, कोलकाता, हैदराबाद, कश्मीर, ऑल ओवर इंडिया, अगर आप देख लो पंजाब, मतलब फेस्टिव फैशन, ज्वेलरी, लाइफस्टाइल, शॉपिंग ऑप्शन सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। क्योंकि भारत के, इंडिया के कोने कोने से जो अमेजिंग चीजें हैं ना, वो यहाँ पे आपके लिए इकट्ठा हो रही है। सिर्फ शॉपिंग नहीं है, आपके लिए काफी कुछ है, जैसे कि रंगोली कॉम्पिटिशन है, कैरम, चेस, कुकिंग कॉम्पिटिशन एंड डांडिया, जैक कम्युनिटी के अवार्ड्स भी हैं, एंड दीपावली डिनर विरुंथु भी है। दिस इज ऑल लाइंड अप, समझ रहे हैं आप? प्लस विजिटर्स के लिए ना मोबाइल फोन्स, क्रूज डिनर वाउचर्स एंड दुबई, लंदन, पेरिस, रोम और न्यूयॉर्क का फ्री एयर टिकट भी है। सोचो इतना कुछ एक ही जगह पे, और प्लस दिवाली की शॉपिंग तो है ही। मतलब शॉपिंग के बहाने जाओ और किस्मत को ये बोलो कि चलो ना सूटकेस भी पैक करवा दो ना प्लीज, तो किस्मत मान भी जाएगी, कभी कभी ऐसा होता है। सो डेट सेव कर लो, 16 से 25 अक्टूबर सिंगापुर एक्सपो, हॉल 9, फ्लाईओवर 3। फेस्टिव सीजन है भाई, मेक इट बिगर विद जैक सलाम इंडिया द फैमिली एक्सपो, एंड स्पेशली इट्स द 20th एनिवर्सरी, तो स्पेशल तो बनता ही है कि नहीं?

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: बॉलीवुड आर है तो पता है क्या होता है, बॉलीवुड में कभी कभी कुछ फिल्में कैंसिल होती नहीं है। हमें लगता है कि ओहो ये पिक्चर डिब्बा बंद हो गई, वो डिब्बा बंद होती नहीं है, बस थोड़ा साइडलाइन हो जाती है, कैंसिल नहीं होती है, थोड़ा लंबा ब्रेक ले लेती है। हर किसी को ब्रेक चाहिए, फिल्म ने ब्रेक ले लिया सोचने के लिए कि हम और क्या कर सकते हैं। फिलहाल मुझे लगता है इंशा अल्लाह के साथ वही हो रहा है। अब आप कहेंगे ये कौन सी पिक्चर थी, हेलो ऐसे क्या कर रहे हो यार। संजय लीला भंसाली और आलिया भट्ट रिपोर्टेडली लव एंड वॉर के बाद इंशाल्लाह को रिवाइव करने की बात कर रहे हैं। ये भंसाली जी का प्रोजेक्ट था, कैसे भूल सकते हो, मैंने कहा था ना भूल जाते हैं कई बार लोग, याददाश्त अच्छी नहीं है लोगों की। एंड दिस इज द प्रोजेक्ट जो 2019 में आलिया और सलमान के साथ अनाउंस किया गया था। काफी साल हो गए, भूलना बनता भी है, फिर शेल्व हो गया। इंटरेस्टिंगली स्टोरी का बेसिक आइडिया सेम रह सकता है, स्क्रिप्ट को एक फ्रेश स्पिन की बहुत ज्यादा जरूरत है, रीवर्क किया जाएगा, मेल लीड ऑफकोर्स बदलेगा पर अभी लॉक नहीं है। शाहरुख खान का नाम स्पेक्युलेट हो रहा है लेकिन फिलहाल कास्टिंग फाइनल है नहीं और मुझे लगता नहीं है कि भंसाली साहब शाहरुख खान को आलिया के ऑपोजिट लेकर आएंगे, इतना तो वो समझते हैं, वैसे कह नहीं सकते। फिलहाल फोकस उनका लव इन वॉर पे है जो कि रिलीज हो रही है 21 जनवरी को। जैसे जैसे इसके पोस्टर्स आ रहे मेरे तो हार्ट बीट्स बढ़ती जा रही है, स्पेशली माय माय विकी। अब उसके बाद इंशाल्लाह फाइनली इंशाल्लाह बनेगी। कमिंग सून, एक्चुअली कमिंग, ऐसे से नाम याद आ रहे हैं मुझे, बोलने के लिए मौका मिलेगा मुझे इंशाल्लाह के लिए इंशाल्लाह।

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: हाय सिंगापुर, दिवाली आ रही है और दिवाली में क्या आता है? शॉपिंग। और दिवाली शॉपिंग में क्या आता है? ज्वेलरी है ना, गोल्ड दिस दैट। अब क्या है ना, गोल्ड ज्वेलरी का अगर प्लान हो तो एक टेंशन ऑटोमेटिकली साथ में आ जाती है। रेट अभी ले या थोड़ा वेट कर ले? क्या करें यार, सोना है भी तो इतना महंगा। वो गाना था ना, सोने पे छाई महंगाई, पर मैं फिर भी सोना लेके आई। यस, जोया लुकास इस फेस्टिव सीजन उसी कंफ्यूजन को थोड़ा और आसान करने के लिए वो आए हैं फेस्टिव प्राइस प्रॉमिस के साथ। गोल्ड ज्वेलरी मेकिंग चार्जेस पे 1% ऑनवर्ड्स वो स्टार्ट हो रहे हैं उनके, और आप सिर्फ 10% एडवांस देकर अपनी ज्वेलरी लोएस्ट गोल्ड रेट पर प्री बुक कर सकते हैं। मतलब सपोज करो गोल्ड प्राइस बढ़ा, आप प्रोटेक्टेड हो, कुछ नहीं होगा, और अगर रेट नीचे आ गए लोअर रेट का बेनिफिट आपको मिल जाएगा। समझ रहे हैं? और एक एक्स्ट्रा पर्क भी है, जोया लुकास मोबाइल ऐप से फर्स्ट टाइम बुकिंग करने पर आपको 100 SGD डायमंड गिफ्ट वाउचर भी मिल रहा है। 100 सिंगापुर डॉलर का डायमंड गिफ्ट वाउचर। समझ रहे हैं इस बात को? दिस ऑफर इज वैलिड जस्ट टिल 7th of November 2026। ओके, तो जल्दी जल्दी काम करिए, क्योंकि इस तरह का गोल्ड पे फेस्टिव ऑफर जो है जोया लुकास ही लेकर आ सकता है। एंड जोया लुकास है तो लाइक ज्वेलरी ऑलरेडी विशलिस्ट में हम हर किसी के होते हैं, बस वो स्क्रीनशॉट जो सेव करके रखा था उसको निकालो और काम पे लगाओ। वही डिजाइन, रेट लॉक कर लो अभी से।

सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल

0: हैंग आउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंग आउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: इतने सारे गाने मेरे दिमाग में आ गए कि मैं क्या बताऊं, एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग वन इज ओ ओ याद आया। बात बताती हूँ। चमक चलो याद आया। क्रिमिनल। हाय सिंगापुर, दिस इज मी मुग्धा। इमेजिन करो शाहरुख खान और करीना कपूर एक साथ फिर से, वो भी डांस फ्लोर पर, एंड करीना इज परफॉर्मिंग फॉर अ स्पेशल डांस नंबर। सो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, करीना एसआरके स्टारर किंग में बहुत ही स्पेशल डांस नंबर के लिए वो उनको ज्वाइन कर सकती है। गाने का नाम रिपोर्टेडली डैडी कूल है। सचिन जिगर का म्यूजिक है एंड मेकर्स इससे ना फिल्म का जो एक बहुत बड़ा हाईलाइट है वो बनाना चाहते हैं। एक्साइटमेंट तो देखो समझ में आ रही है। एसआरके और करीना को प्रॉपर बिग स्क्रीन स्पेस शेयर किए अराउंड 15 साल हो चुके हैं भाई, बहुत लंबा वक्त हो चुका है। कभी खुशी कभी गम, असोका, रावण, इसकी केमिस्ट्री बहुत पहले से टेस्टेड है इनकी, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। एंड ऑफिशियली कुछ कंफर्म हुआ नहीं है, पर अगर किंग में रियूनियन होता है तो आफ्टर 15 लॉन्ग ईयर्स हम इन दोनों को स्क्रीन पर एक साथ देखेंगे। लेकिन आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, जस्ट ऐसे ही जनरल नॉलेज के लिए, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो कौन सी ऐसी फिल्म है जिसमें भी शाहरुख खान थे लेकिन करीना वॉज देयर जस्ट फॉर एन आइटम नंबर? याद रखना, करीना वॉज देयर जस्ट फॉर एन आइटम नंबर। शाहरुख वॉज द हीरो अलॉन्ग विद सम अदर एक्टर्स। चलो हिंद देती है, उसमें इरफान खान थे। अब तो सही बता दो यार, इरफान एंड शाहरुख स्टारर एक फिल्म जिसमें करीना ने सिर्फ एक आइटम नंबर के लिए अपना

0: जनरल नॉलेज बताना मेरे को 9151896 पर। पता तो लगे कितना जानते हो बॉलीवुड के बारे में। छमक छलो तो सारे ही जानते हैं।
1: You're tuned into Radio Masti 24/7 live, keeping the world Bollywood entertained anytime, anywhere.

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: हाय सिंगापुर, वेलकम बैक। शो के थर्ड एंड द लास्ट आर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पता है ये जो आर है ना, देयर सम एनर्जी, बिकॉज यहाँ पे हम डांडिया की बात करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस आर विद सम डांडिया वाइब। पता है क्यों? सिंगापुर गुजराती सोसाइटी लेकर आ रही है सिंगापुर का ट्रूली ओरिजिनल नवरात्रि। दैट्स हैपनिंग ऑन 16, 17 and 18 October एट लगुना बॉल रूम दूसरे थानी लगुना, समझ रहे हो? एंड इस बार द वेन्यू इज बिगर, इट्स ग्रैंडर एंड सेलिब्रेशन शुरू होगा बैठा गरबा के साथ। सो नाउ हु नो इट, यू नो इट। वो क्या कहते हैं, इफ यू नो यू नो, IYKYK समथिंग समथिंग। एनीवे, बैठा गरबा जो है वो ट्रेडिशनली नवरात्रि की शुरुआत होती है, मतलब गरबा की स्टार्टिंग जो होती है दैट इज बैठा गरबा से शुरू होता है एंड देन इट स्टार्ट्स एंड गोज ऑन। सो बैठा गरबा से शुरू होगा, म्यूजिक, गरबा, डांडिया एंड देन द फेस्टिव एनर्जी। टिकट्स बहुत जल्दी सेल आउट हो रहे हैं, लास्ट मिनट का कॉन्फिडेंस बिल्कुल मत दिखाना। बुक नाउ एट sgs.org.sg नवरात्रि 2026। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बिना कोई मेहनत किए, मतलब वहां लाइन लगाए, अगर आपको घर बैठे टिकट्स चाहिए तो जल्दी से मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। गरबा और डांडिया सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गली कौन से फेस्टिवल के साथ एसोसिएटेड है? ऑप्शन ए ओनम, ऑप्शन बी नवरात्रि, ऑप्शन सी पोंगल। आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन अगेन। गरबा और डांडिया सबसे स्ट्रॉन्गली कौन से फेस्टिवल के साथ कनेक्टेड है, एसोसिएटेड है? ऑप्शन ए ओनम, ऑप्शन बी नवरात्रि, ऑप्शन सी पोंगल। आपको सही जवाब भेजने हैं 9151896 3 पर। एंड Who knows? If you know, you know. अगर आपका जवाब सबसे तेज, सबसे सही और मुझ तक पहुंच गया तो आप इस नवरात्रि डांडिया नाइट्स की टिकट ले सकते हो। So, Singapore's truly original नवरात्रि is all set. अब बस आप रेडी हो जाओ और पहुंच जाओ, समझे बच्चू?

0: और खबर मिली है कि दुनिया में लोग फार्ट बॉटल में खरीद रहे हैं।
1: क्या लोगों के पास पैसे ज्यादा है या दिमाग कम? मस्ती मैडनेस, जहां न्यूज भी होती है गैस्ट्रोनॉमिकल।
2: Some invitations are simply too stylish to miss. This October, High Life Exhibition returns to Singapore, bringing you a curated world of Indian fashion and lifestyle. Discover festive wear, bridal couture, jewelry, accessories and home decor from designers across India and Singapore. 13th and 14th October, 10 a.m. to 8 p.m. at Holiday Inn Singapore, Orchard City Centre. High Life Singapore, 2 days, endless style, one destination.
3: It's a Masti Partner event.
4: Hangout करेंगे पर थोड़ा हटके. ये है Masti Hangout RJ Mugdha के साथ.
5: Hi. कभी कभी ना लाइफ का सबसे बड़ा सरप्राइज कोई लॉटरी टिकट नहीं होती है, कोई जैकपॉट नहीं होता है, एक पुराने बैंक अकाउंट से आपको वो सरप्राइज मिल सकता है। चाइना में 71 साल का एक आदमी, यानी 71 ईयर ओल्ड एक आदमी, रू रसी रू सी सा माइना अपॉन माई शू, पता नहीं बचपन में कुछ तो खेला होगा, मुझे रू से याद आ गया। एनीवे, किसी को याद आए तो मुझे बताना। चाइना में 71 ईयर ओल्ड एक आदमी रू, जिनका नाम है, पिछले 21 साल से ना वो स्क्रैप कलेक्ट कर रहे थे, स्क्रैप, और वो अपना उसी से गुजारा कर रहे थे। उन्हें लगता था कि रिटायरमेंट के बाद उनके पास तो कुछ भी नहीं होगा, उनके पास पेंशन भी नहीं है। फिर सोशल वेलफेयर वर्कर्स ने उनका बैकग्राउंड चेक किया और पता लगा कि भाई साहब की पेंशन 2015 से एक्यूमुलेट हो रही थी। उन्हें पता नहीं था। बैंक अकाउंट चेक हुआ और बैलेंस था अराउंड 4,24,000 yuan, यानी रफली 61 lakh rupees। रीजन, उन्हें पहले ना लगभग 30 साल तक उन्होंने एक स्टेट रन शॉप में काम किया था और सैलरी से इंश्योरेंस कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो ऑलरेडी उनके डिडक्ट होते रहते थे। बेचारे को पता नहीं था, समझ नहीं आया। सोचो, आदमी 21 साल से स्क्रैप कलेक्ट कर रहा था और उसके नाम पे क्वाइटली इतना बड़ा अमाउंट वेट कर रहा था। ऑनेस्टली ना, लाइफ कभी कभी लेट एंट्री लेती है, लेकिन जब आती है ना तो पूरी कहानी बदल देती है। एंड दैट्स व्हाई आई बिलीव दैट देयर इज अ सुप्रीम पावर, कोई तो शक्ति है जो ऊपर से सब देख रही है, एंड दैट पावर विल नेवर लेट यू डाउन। अगर आप कुछ चीजें उनके भरोसे छोड़ दीजिए, मेहनत करते रहिए, बट मन का हो तो अच्छा और मन का ना हो तो भी अच्छा। वो आदमी मेहनत भी करता रहा और जब उसको सच में फल चाहिए, हालांकि पहले भी मिल जाता तो अच्छा था, जिंदगी अच्छी हो जाती, बट देन मुश्किल वक्त तो देखो बुढ़ापे का ही होता है, एंड ही हैज द मनी। गुड यार, आई एम सो हैप्पी फॉर दिस वन। रू रू रसी रसी रसी रू सी सॉ माइना अपॉन माई शू, कौन गेम था भाई ये?
6: You're tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.

0: इस दीपावली शॉपिंग भी, सेलिब्रेशन भी और एक्साइटिंग प्राइजेस जीतने का मौका भी। Zaxxon India The Family Expo is back with its grand 43rd edition celebrating 20 amazing years. Enjoy 10 days of Deepavali discounts, Indian shopping, delicious food, competition stanya, cultural entertainment and family fun. 16th to 25th October at Hall 9, Foyer 3, Singapore Expo Mein. Entry is free, free, free. So bring your family and celebrate the spirit of India at 43rd edition of Zaxxon India The Family Expo. The biggest Deepavali discount sale of the year. For more info, log on to www.zaxxonindia.com.
1: As the sun rises, so does hope. Begin your day with devotion, harmony and positivity with the Devotional Hour on Radio Masti 24/7. Masti Pe Bhakti, subah 6 baje se.
2: हैंग आउट करेंगे पर थोड़ा हटके, ये है मस्ती हैंग आउट आरजे मुग्धा के साथ।
3: अच्छा सिंगापुर फेस्टिव शॉपिंग के नाम पे ना अगर आपको एक ही जगह पे कपड़े मिल जाएं, ज्वेलरी मिल जाए, एक्सेसरीज मिल जाएं, घर के लिए कुछ ब्यूटीफुल चीजें, डेकोर आइटम्स मिल जाए तो काम इजी हो जाएगा ना, राइट? इसीलिए नोट करो, हाई लाइफ एग्जीबिशन सिंगापुर आ रहा है 13th and 14th October सुबह 10 से रात के 8 बजे तक एट हॉलीडे इन सिंगापुर ऑर्चर्ड सिटी सेंटर, समझे? एंड यहाँ छोटा मोटा कलेक्शन नहीं है, देयर आर 75 प्लस लीडिंग इंडियन डिजाइनर्स एक ही छत के नीचे, बताओ ये तो और कहीं नहीं मिलेगा भाई। ट्राइड एंड टेस्टेड है ये, फेस्टिव आउटफिट्स हैं, ब्राइडल वेयर, स्टेटमेंट ज्वेलरी, एक्सेसरीज, होम डेकोर, लाइफस्टाइल पीसेस। अच्छी बात यह है कि आप डिजाइनर से ना डायरेक्टली बात कर सकते हो, मिल सकते हो, आप उनसे स्टाइलिंग एडवाइस ले सकते हो, और अगर किसी आउटफिट में थोड़ा पर्सनल टच आपको चाहिए दैट टू डिस्कस कर सकते हो। हाँ, कोई छुपा हुआ नहीं है, सब आपके लिए है वहाँ पे। अब आप जाओ उनके पास, डे वेयर से लेके प्रॉपर सेलिब्रेशन लुक तक काफी वैरायटी आपको मिलेगी, और आपको हेल्प मिलेगी डिजाइनर्स की जो आपको हेल्प करेंगे आपका एक क्यूरेटेड लुक देने में। सो फ्रेंड्स के साथ जाओ, फैमिली के साथ जाओ, प्लान बनाओ, 13th and 14th October हाई लाइफ एग्जीबिशन सिंगापुर। बस एक ही बात कहना चाहती हूँ, सिर्फ देखने जा रहे हैं बोल के मत जाना, चांसेस है बैग लेकर बाहर आओगे तो पहले से कुछ एक बैग लेके जाना एक्स्ट्रा, यू नो, जस्ट लाइक माय मॉम, तीन सूटकेस लेके जाती हैं और सूटकेस के अंदर चार बैग लेके जाती हैं खाली, क्योंकि वापस आएंगी तो भर के लाएंगी ना।

0: तैयार हो जाइए जब ढोल बजेगा, डांडिया खनकेगा और पूरा सिंगापुर बोलेगा It's time for Singapore Gujarati Society presents Singapore's truly original Navratri. 16th, 17th and 18th October at the new grand and stunning Laguna Ballroom, Dusit Thani Laguna. Three spectacular nights of Garba Dandiya tradition and celebration. Complimentary shuttle available too. Tickets $25 onwards almost sold out, but you can still win yours with Masti. Book now at sgs.org.sg/Navratri2026. Singapore Gujarati Society presents Singapore's truly original Navratri. Tradition, togetherness, celebration.
1: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं.
2: Life थोड़ी boring लग रही है. नहीं लेने का टाइम फॉर योर थेरेपी सेशन मस्ती का मंत्रा विद आरजे अंतरा जहां न्यूज है फिल्मी गॉसिप है स्पाइसी और म्यूजिक है फुल ऑन मस्त बिकॉज हैप्पीनेस का असली मंत्रा लाती है आरजे अंतरा हर ट्यूसडे सुबह 7 बजे ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7
3: हैंग आउट करेंगे पर थोड़ा हटके ये है मस्ती हैंग आउट आरजे मुग्धा के साथ
4: वाह भाई आज का शो तो एक प्रॉपर मिक्स बैग था जैसे वो मिक्स हर्ब्स होते हैं ना मिक्स ड्राई फ्रूट मिक्स मिठाई मिक्स क्यूरेटेड गिफ्ट आइटम्स ओह माय गॉड कितनी चीजें मुझे ध्यान में आ रही बिल्कुल वैसा शो था आज का सिंगापुर का इम्पोर्टेंट हेज अपडेट थोड़ा घूमना फिरना है पर ये हेज ना थोड़ा ध्यान रखना इसका बॉलीवुड का मसाला फेस्टिव शॉपिंग एवरीथिंग फॉर यू पूरा मसाला मैं आपके लिए आज के शो में लेकर के आई थी मुझे ना मस्ती हैंगआउट का ये पार्ट बहुत अच्छा लगता है हमेशा से ना कीप मेंशनिंग दिस अगेन एंड अगेन अगेन कभी यूजफुल भी बात मिल जाती है कभी कोई इवेंट नोट कर लेते हैं हम कि भाई यहाँ पे जाना है वहाँ पे जाना है कितनी मस्ती करेंगे हम है ना कभी कोई फिल्मी अपडेट ऐसी होती है कि मूड बन जाता है अरे यार ये देखेंगे हम ये आ रहा है ना एंड कभी ना कोई रैंडम स्टोरी जो एक स्माइल दे जाती है जैसे कि That man, रूरू रस्सी फिलहाल शो खत्म होता है बाकी आगे का दिन आपका कोई काम पेंडिंग है वो हो जाएगा डोंट वरी शॉपिंग लिस्ट पेंडिंग है तो अभी तो बहुत मौके हैं शॉपिंग करने के जस्ट चिल करो दिस इज मी मुग्धा रेडियो मसी 24/7 लाइव पर फिलहाल मैं आपसे इजाजत लेती हूँ बने रहिए क्योंकि काफी कुछ आएगा सुनते रहिए मैं जा रही हूँ मिलूंगी अब शुक्रवार को जी बहुत सारी अमेजिंग बातों के साथ तब तक के लिए चला बाय बाय सी या

0: आरजे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर.

0: आएंगे
1: ना करण अर्जुन आएंगे ना ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे इस दीपावली शॉपिंग भी, सेलिब्रेशन भी और एक्साइटिंग प्राइजेस जीतने का मौका भी। Zaxxon India The Family Expo is back with its grand 43rd edition celebrating 20 amazing years. Enjoy 10 days of Deepavali discounts, Indian shopping, delicious food, competition standya, cultural entertainment and family fun. 16th to 25th October at Hall 9, Foyer 3, Singapore Expo Mein. Entry is free, free, free. So bring your family and celebrate the spirit of India at 43rd edition of Zaxxon India The Family Expo. The biggest Deepavali discount sale of the year. For more info, log on to www.zaxxonindia.com.
2: Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वी आर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।

0: आदाब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर
3: चेक इट आउट

0: Your Masti Music Cafe is open. Freshly brewed beats served hot and back to back.
1: और खबर मिली है कि दुनिया में लोग फार्ट बॉटल में खरीद रहे हैं।
2: क्या लोगों के पास पैसे ज्यादा है या दिमाग कम? मस्ती मैडनेस, जहाँ न्यूज भी होती है गैस।

0: All music is loud. Some songs just sneak in. What makes you smile? Hum along and feel good. Welcome to Masti Unplugged, your indie acoustic playground on Radio Masti 24/7.
1: मेरे करण अर्जुन आएंगे?
2: ना करण अर्जुन आएंगे, ना ही आरजेएस आएंगे. फिलहाल तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे. मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे.

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: छोटी छोटी बातें छोड़ो और बड़े बड़े हिट सुनो। आपके रिक्वेस्ट सी बनाएंगे शो का ब्लॉकबस्टर प्लेलिस्ट। रोमांटिक, फिल्मी, पार्टी वाइब्स सब मिलेगा यही के यही। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर। चेक इट आउट।
1: Your Musty Music Cafe is open. Freshly brewed beats

0: नाचे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक इट

0: करण अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे। सुबह की शुरुआत हो थोड़ी सी न्यूज के साथ, थोड़ी सी गॉसिप के साथ और बहुत सारी मस्ती के साथ। क्योंकि जब ट्यूसडे आता है ना, तो आती है आरजे अंतरा की बातों की बारिश। योर डेली स्कूप ऑफ व्हाट्स हॉट, व्हाट्स वायरल एंड व्हाट्स वर्थ नोइंग, सर्व्ड फ्रेश विद ग्रेट म्यूजिक एंड माय अनबीटेबल चार्म, यू सी। Tune in to me on Masti Ka Mantra with RJ Antara. Har Tuesday subah 7 baje sirf Radio Masti 24/7 Live par. Jab hamara koi show hota hai super hit, to aap kehte hain
2: Once more.
1: Aur Radio Masti 24/7 kehta hai kyun nahi? Presenting the encore of your favorite shows. Another day, another time. For your listening pleasure only. Because super hits deserve a repeat. Check out the encore show schedule on our app menu.
3: Only on Radio Musty 24/7 Live. A part of Musty Media Network Singapore.

0: साहब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।

0: Your Masti Music Cafe is open. Freshly brewed beats served hot and back to back.
1: कुछ पुरानी धुनें, कुछ भूली बिसरी यादें,
2: किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान,
1: कोई आवाज, कोई साज, सिनेमा की दुनिया के किस्से, रुलाते हंसाते उदासी भरे खिलखिलाते किस्से, समर के साथ रेडियो मसी 24/7 लाइव पर लेजेंड्स फिर से। जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें,
3: आई लव यू रसना,
1: समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। Your dose of 90s nostalgia, musty 90s mixtape with aapki 90s wali antra. Thursdays 11 a.m. onwards only on Radio Mercy 24/7 Live.
4: मेरे करण अर्जुन आएंगे
0: ना, करण अर्जुन आएंगे ना ही आरजेस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: लाइफ थोड़ी बोरिंग लग रही है, टेंशन नहीं लेने का। टाइम फॉर योर थेरेपी सेशन, मस्ती का मंत्रा विद आरजे अंतरा, जहां न्यूज है फिल्मी, गॉसिप है स्पाइसी और म्यूजिक है फुल ऑन मस्त। बिकॉज हैप्पीनेस का असली मंत्रा लाती है आरजे अंतरा, हर ट्यूसडे सुबह 7 बजे, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
2: योर मस्ती म्यूजिक कैफे इज ओपन, फ्रेशली ब्रूड बीट्स

सांसों में तूफानों का डेरा, निगाहें जैसे

0: पहुंचे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर.

0: साहब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक

0: पुरुष ही नहीं, महापुरुष है, महापुरुष।
1: वेंसडे को मूड डाउन हो गया, कोई बात नहीं, हमारे पास उसका भी जुगाड़ है। मिडवीक ब्लू, जहां काम की चिंता छोड़ो और हमारे साथ मस्त हो जाओ। फिल्मी बातें, मस्ती मोमेंट्स, थोड़ा छेड़ना और पंगे लेना भी, क्योंकि लाइफ सिर्फ काम के लिए नहीं है मेरे दोस्त। ट्यून इन एंड पावर थ्रू द वीक विद मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7। आओ मूड चेंज करें। Your Musty Music Cafe is open. Freshly brewed beats

0: ना पुरुष ही नहीं महापुरुष है महापुरुष।
1: वेंसडे को वो डाउन हो गया, कोई बात नहीं, हमारे पास उसका भी जुगाड़ है। मिडवीक ब्लूज, जहाँ काम की चिंता छोड़ो और हमारे साथ मस्त हो जाओ। फिल्मी बातें, मस्ती मोमेंट्स, थोड़ा छेड़ना और पंगे लेना भी, क्योंकि लाइफ सिर्फ काम के लिए नहीं है मेरे दोस्त। ट्यून इन एंड पावर थ्रू द वीक विद मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7। आओ मूड चेंज करें।

0: झुमका।
1: Whatever you do, always give 100%. Unless you are donating blood. ये है Midweek Blues on Radio Masti 24/7. आओ mood change कर change कर change.
2: वेलकम बैक भाई, आ जाओ सब इकट्ठा हो जाओ। वेलकम बैक इसलिए कर रही हूँ क्योंकि सुबह भी आपने ट्यून इन, मैं ऐसा अस्यूम कर रही हूँ कि किया ही होगा, अगर नहीं किया है तो कोई नहीं, वेलकम है आप सभी का। 5 बजे की उस पार वाली जो आवाज है वो यहाँ पर बिल्कुल पहुंच चुकी है। गुड इवनिंग, हेलो हाय नमस्ते, रेडियो मस्ती 24/7 पर आओ मूड चेंज करने वाला दिन आ चुका है, यानी कि वेंसडे। इट्स आल्सो नोन एज हम्प डे फॉर सम रीजन, हाँ, क्योंकि ये एकदम हम बीचों बीच में कोजी होकर आ जाते हैं। और साथ साथ में आने की बात कर रही हूँ गाने की, तो बिल्कुल मतलब ऐसे दूसरे गाने जरूर प्ले करूंगी, बट गला जो है वो आज बहुत ज्यादा कुछ खास है नहीं। अब आपने सिंगापुर में देखा ही होगा कि ये जो है मौसम बड़ा बेईमान है, उतना तो नहीं डाल सकते, बट धुआं धुआं हेज वेज और ये सारी चीजें, अ लॉट ऑफ पीपल यू नो, आई एम श्योर दैट यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, दैट हल्का खरखर खिरखिर जो है आपके गले में जब लगती है, या इट्स माय गला इज गोइंग थ्रू दैट फेज। आई होप जस्ट होप दिस डजंट गेट्स वर्स, वरना तो आपने पता ही है अब इतने सालों में जो मुझे जानते हैं और मेरे गले को भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि क्या ही होता है इसके बाद, बट वेल ऑल फिंगर्स एंड टोज एंड एवरीथिंग क्रॉस्ड। इसी बात के साथ भाई यही हुआ है, सुबह से बहुत सारा बहुत काम एंडलेस काम करते हुए हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं। अब 3 घंटा हम स्ट्रेस फ्री होकर सिर्फ और सिर्फ आपके साथ समय बिताएंगे, एंड दैट इज द बेस्ट थिंग टू डू, यू नो दैट राइट। आई लव यू ऑल सो सो वेरी मच। कमिंग अप इज अरिजीत सिंह की आवाज, वी एटलीस्ट आई नीडेड अ बिट ऑफ अरिजीत एकदम स्टार्ट करने के लिए। यहाँ पर हमारा स्टार्टर शुरू हो चुका है, रेडियो मस्ती 24/7 पर। गुड इवनिंग।

0: tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.
1: और कहीं कोई चाहता है 105 बच्चे?
2: बेबी बूम नहीं, बेबी सुनामी. क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो. दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7.
3: सम इनविटेशंस आर सिंपली टू स्टाइलिश टू मिस. This October, High Life Exhibition returns to Singapore, bringing you a curated world of Indian fashion and lifestyle. Discover festive wear, bridal couture, jewelry, accessories and home decor from designers across India and Singapore. 13th and 14th October, 10 a.m. to 8 p.m. at Holiday Inn Singapore, Orchard City Centre. High Life Singapore, 2 days, endless style, one destination.
4: It's a Masti partnered event.
3: Take a break, laugh a little, and vibe a lot, because weekend is almost here. Midweek Blues on Radio Masti 24/7. Our mood change kare.
5: कंप्लेन आई जी, कंप्लेन. आप तो हमें अपने बारे में कुछ बताती ही नहीं है. रेडियो मस्ती 24/7 और आपके साथ यहाँ पर चल रहा है मिडवीक ब्लूज. 5:00 हो चुके हैं, 17 मिनट. भाई बताते हैं क्यों नहीं, ये भी कितनी हसीन सी दोस्ती है. आप ये भी देखो ना, हमारी दोस्ती के बारे में हमारी खूबसूरती ही कुछ ऐसी है इस रिश्ते की, कि कोई ज्यादा पूछना पाछना नहीं, कुछ नहीं, बस ये बंदी अच्छी लगती है, ये बंदा अच्छा लगता है, हमारा एक कनेक्शन है, हम लोगों को गाने सुनना पसंद है, बातें करना पसंद है, काइंड होना पसंद है, यू नो, और अपनी एक दूसरे के क्या फील करते हैं और क्या कहना चाहते हैं और क्या सुनना चाहते हैं, ये सारी चीजों के ऊपर जब रिलेशनशिप्स बेस्ड हो, आई थिंक दोज आर द मोस्ट प्योरेस्ट वंस. सो ये था मेरा जवाब टू द पर्सन हु जस्ट रोट मी. आप तो कुछ बताती नहीं है अपने बारे में, है ना. वेल यहाँ पे रमेश जी हमारे बिल्कुल ट्यून्ड इन हो चुके हैं. पता नहीं सपना आंटी कहाँ है, सब धीरे धीरे करके ललिता भी भोपाल से जो है ट्यून इन कर चुकी है. और जब सब धीरे धीरे यहाँ पे जुड़ते हुए जा रहे हैं, भाई खुशखबरी आई है मार्केट में. जो है सब एक से दो, दो से तीन होते हुए जा रहे हैं. कुछ दिनों पहले ही जो है रणवीर सिंह एंड दीपिका पादुकोण के घर में सेकेंड टाइम लक्ष्मी आई, यानी कि बेबी दुआ जो है बड़ी बहन बन गई एंड उनकी एक छोटी सी प्यारी सी बेबी गर्ल हुई. उतना हम लोग उसी की खुशी अभी तक मना रहे थे कि अब एक और भाई सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड कियारा आडवाणी जो ऑलरेडी एक बच्चे की मम्मी एंड दादी है, उन्होंने अनाउंस किया. मतलब आई थिंक फेब 2025 में हुए थे उनका लास्ट बेबी. Yes, it's October 2026 and they're already welcoming their second kid. यानी कि अनाउंसमेंट हो चुकी है कि हम लोग तैयार हो रहे हैं. Not bad. बहुत बहुत मुबारक जी, बहुत बहुत बहुत ही शानदार, बहुत अच्छा लगा. अचानक से मुझे ना एकदम मोहल्ले वाली फील आ गई कि मतलब मैं उनके घर चली गई, मैंने उनके घर का किवाड़ खोला और अरे बहन जी पता चला है. बहुत बहुत बहुत खुशी की बात हुई. लड्डू खिलाइए, मुंह मीठा कराइए, बहुत शानदार है ना. फिर खाने की बात अंतरा, फिर खाने की. मैं खाने से दूर भागू तो कैसे भागू, खुद ही तो मैं उसी के पास पहुंच जाती हूँ. अब मुझे मोती चूर के लड्डू खाने का मन कर रहा है, वो भी मेरे कानपुर वाले बनारसी के लड्डू. ओहो, अगर आपने कभी भी जिंदगी में कानपुर जाओ, वहां जाके बनारसी के मोती चूर के लड्डू जरूर ट्राई करना. ओ माई गॉड, दे आर डिलिशियस. आई कैन ऑलमोस्ट यू नो टेस्ट देम. अपने गाना प्ले करो जल्दी.
6: ब्रदर्स फॉर लाइफ, मिक्का सिंह.

0: Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore.
1: Check it out.
2: Not all music is loud. Some songs just sneak in.
3: What?
2: Makes you smile, hum along, and feel good. Welcome to Musty Unplugged, your indie acoustic playground on Radio Musty 24/7.
4: तैयार हो जाइए जब ढोल बजेगा, डांडिया थनकेगा और पूरा सिंगापुर बोलेगा It's time for Singapore Gujarati Society presents Singapore's truly original Navratri. 16th, 17th and 18th October at the new grand and stunning Laguna Ballroom, Dusit Thani Laguna. Three spectacular nights of Garba Dandiya tradition and celebration. Complimentary shuttle available too. Tickets $25 onwards almost sold out, but you can still win yours with Musty. Book now at sgs.org.sg/Navratri2026. Singapore Gujarati Society presents Singapore's truly original Navratri. Tradition, togetherness, celebration.
5: Baju.
6: Traffic update.
7: इट्स 529 बाय द स्टूडियो क्लॉक. आइए आपको बताया जाए कि क्या है ट्रैफिक अपडेट इस घंटे. हैवी ट्रैफिक आपको मिलेगा ऑन शिरस एवेन्यू टुवर्ड्स नहीं आफ्टर मरीना बोलेवार्ड. हैवी ट्रैफिक की खबर ऑन पीआईई टुवर्ड्स चांगी बिटवीन बीकेई एंड बुकेट बतौक ईस्ट एवेन्यू 3. और मिलेगा हैवी ट्रैफिक ऑन ब्रैडल रोड टुवर्ड्स बार्टली बिटवीन सीटीई एंड अपर थॉम्पसन रोड. वेल, ये था इस घंटे का ट्रैफिक अपडेट. एंड अभी यहाँ पे सिंगापुर गुजराती सोसाइटी की बात हो रही थी. आई हैव अ पेयर ऑफ टिकट्स टू गिव अवे. सो If you want that, I have an interesting question for you. But पहले ये रेट्रो गाना सुनेंगे, थोड़ा सा you know enjoy करेंगे, और उसके बाद जब मैं आऊंगी तो मैं वो interesting सा question लेके आऊंगी. तो जवाब देने के लिए आप जरा तैयार हो जाओ.

0: Whatever you do, always give 100%. Unless you are donating blood. ये है मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7. आओ मूड चेंज कर चेंज कर चेंज कर चेंज कर चेंज
1: कर चेंज कर रेडियो मस्ती 24/7 पर मैं अंशु आपके साथ यहाँ पर चल रहा है. ऑफ कोर्स
2: क्या चल रहा है
1: मिडवीक ब्लूज चल रहा है. कुछ ऐसा हो जाता है कि ठीक है, मैं किसी के टेक्स्ट पे यहाँ पे भी हंस रही थी कि मैंने ऐसा जवाब दे दिया क्योंकि मुझसे उम्मीद किसी जवाब की होती है और मैं हमेशा जो है दूसरी तरह के जवाब दे बैठती हूँ. या दैट्स कंप्लीटली मी. वेल चलो आपको जताते हैं सिंगापुर गुजराती सोसाइटी एक ये जो है हमारे पास वन पेयर ऑफ टिकट अप फॉर ग्रैब. ऑल यू हैव टू डू इज दैट मैं आपको एक गाने का मतलब इट्स नॉट इंट्रो ऑल्सो ठीक है बीच से कहीं पर भी इसे मैं प्ले कर दे रही हूँ ठीक है. एंड जब आप इसको सुनोगे आप उसको सुन के मुझे बताना कि ये गाना कौन सा है. एंड इट इज सुपर डुपर इजी भाई. आई एम टॉकिंग अबाउट सिंगापुर का ट्रूली ओरिजिनल नवरात्रि 16th, 17th, 18th को दूसरी लगुना में होने वाला है. इट्स अ न्यू वेन्यू विच वेयर दे आर डूइंग इट. अ लॉट ऑफ पीपल हैव ऑलरेडी वन एंड इफ यू आर नॉट वन ऑफ देम देन यू स्टिल गॉट चांस टुडे टू विन दीज टिकट्स फ्रॉम मी. ओके आर वी रेडी? यस वी आर. Are we ready? Okay. बस इतना चीयर कर दिया कोई बात नहीं. अब आप सुनो कि ये गाना सुन के मुझे बताओ कि ये गाना आपको पता है ये कौन सा है. सुनो.

कमाल कमाल बेमिसाल. ओके मैं तो एंजॉय ही करने लग गई. यू हैव टू टेल मी व्हिच गाना इज दिस. इफ यू कैन गेस द गाना 9151896 वहां पर मुझे है बताना. एंड व्हाइल यू डू दैट मैंने प्ले करना है एक और डांडिया वाला गाना जो कर देगा आपको थोड़ा कंफ्यूज, है ना. चलो प्ले करें, आप मुझे जवाब दो फटाफट से कौन सा गाना था ये जिसका बीच से कहीं से भी मैंने पार्ट चला दिया यहाँ पे. टेल मी, आई एम वेटिंग.

थिएटर में मूवी देखने, तो क्या होता है कि जब हम थिएटर में मूवी देखने जाते हैं तो एक पर्टिकुलर टाइम की, और आजकल टाइम भी बड़े डिफरेंट टाइप के हो गए हैं, 10:35, 11:52 PM ऐसे वाले. पहले बहुत सिंपल था, दो यू नो तीन से छह का शो, फिर छह से नौ का शो, फिर नौ से बारह वाला एक शो हुआ करता था, ऐसे शोज हुआ करते थे. बट अब ऐसे बहुत ही डिफरेंट हो गया है. वेल, तो क्या था कि ये जो हमारे लॉयर साहब हैं, इन्होंने 10:35 PM की मूवी के एक टिकट लिया. बट हुआ कुछ ऐसा कि मूवी शुरू होते होते हो गए 10:52 PM. सो हैदराबाद के ये जो एडवोकेट साहब हैं, उन्होंने PVR पे मतलब खींच के लेगा कंज्यूमर कोर्ट कि आफ्टर एड्स एंड ट्रेलर्स जो है उसने डिले कर दिया इनका लेट नाइट शो. एंड ही आर्ग्यूड दैट द डिले पुश्ड हिज रिटर्न टू होम, जो कि वहां से करीबन एक घंटा दूर पे था, अननेसेसरी इनकन्वीनियंस उनको फेस करना पड़ा. सो हैदराबाद के डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन ने अग्री किया, कॉलिंग दैट दिस एक्सटेंडेड एड का स्क्रीनिंग वॉज अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस. जब तुमने कहा था तो तुमने इतना 10:52 तक तुम एड ही प्ले करते रह गए, मतलब ये कौन सी बात हो गई. सो PVR वॉज ऑर्डर्ड टू पे 20,000 rupees एज कॉम्पनसेशन, 5,000 एज लिटिगेशन कॉस्ट, एंड 50,000 डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर वेलफेयर फंड में डालने को बोले एज प्यूनेटिव डैमेज. टोटल 75,000. बोलो, कर लो बात. मैं और रेणुका अक्सर ये डिस्कस करते हैं कि हमें ना केस करना नहीं आता है, मतलब लोग कैसे कैसे कहां कहां से बातें उठाकर केस करके पैसे वापस मांग लेते हैं. यार मेरे से अपने दोस्तों से पैसे नहीं वापस मांगे जाते, ये तो बहुत ही दूर की बात है. गाना चलाती हूँ अच्छा सा. चलो भाई, बढ़ते हैं आगे. गुड इवनिंग.

0: आप पुरुष ही नहीं, महापुरुष है, महापुरुष।
1: वेंसडे को मूड डाउन हो गया, कोई बात नहीं, हमारे पास उसका भी जुगाड़ है। मिडवीक ब्लू, जहां काम की चिंता छोड़ो और हमारे साथ मस्त हो जाओ। फिल्मी बातें, मस्ती मोमेंट्स, थोड़ा छेड़ना और पंगे लेना भी, क्योंकि लाइफ सिर्फ काम के लिए नहीं है मेरे दोस्त। ट्यून इन एंड पावर थ्रू द वीक विद मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7। आओ मूड चेंज करें।

0: This is Radio Masti 24/7 Live, the only local connect with global expat Indians. Anytime, anywhere.
1: Some invitations are simply too stylish to miss. This October, High Life Exhibition returns to Singapore, bringing you a curated world of Indian fashion and lifestyle. Discover festive wear, bridal couture, jewelry, accessories and home decor from designers across India and Singapore. 13th and 14th October, 10 a.m. to 8 p.m. at Holiday Inn Singapore, Orchard City Centre. High Life Singapore, 2 days, endless style, one destination.
2: It's a Masti Partner event.
3: तैयार हो जाइए जब ढोल बजेगा, डांडिया खनकेगा और पूरा सिंगापुर बोलेगा इट्स टाइम फॉर सिंगापुर. गुजराती सोसाइटी प्रेजेंट्स सिंगापुर्स ट्रूली ओरिजिनल नवरात्रि. 16th, 17th and 18th October at the new grand and stunning Laguna Ballroom, Dusit Thani Laguna. Three spectacular nights of Garba Dandiya tradition and celebration. Complimentary shuttle available too. Tickets $25 onwards almost sold out, but you can still win yours with Masti. Book now at sgs.org.sg/navratri2026. Singapore Gujarati Society presents Singapore's truly original Navratri. Tradition, togetherness, celebration.
1: Take a break, laugh a little. And vibe a lot because weekend is almost here. Midweek Blues on Radio Masti 24/7. Our mood change kare.
4: इधर इट इज कंगना दीदी और इट इज जया आंटी. मतलब हमारा मन लगाए रखती हैं ये सभी लोग मिलकर. 6:00 हो चुके हैं, 17 मिनट. रेडियो मस्ती 24/7 ऑन ट्रैप के साथ मिडवीक ब्लूज. जी हाँ, और जब ये दोनों ही साथ में आ जाए तब होता है ये जो हुआ है. भाई कुछ ना कुछ कंगना दीदी हमारी बोलती ही रहती है और जो है जया आंटी जो है वो कुछ नहीं बोलती है. स्पेशली जब उनसे पूछा गया कि भाई आप यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रही हो, कुछ तो बता दो, क्या कहना चाहती, क्या हो. So well, कुछ ऐसा हुआ. सिनेरियो आपको समझा देती हूँ कि भाई हाल ही में एक इंडिया ब्लॉक प्रोटेस्ट हुआ अगेंस्ट दी इलेक्शन कमीशन. सो एक्टर पॉलिटिशियन जया बच्चन जो है वो वहां पे बिल्कुल इस प्रोटेस्ट पे पहुंची हुई थी एंड शी हैड दिस exchange with a reporter. So she was refusing to clarify unka stance jo hai is protest mein. Which jo hai hamari dusri actor and MP Kangana Ranaut hai. She was like, oh ho ho, yahi to wo mauka hai jiska main wait kar rahi thi. So well, Jaya ji jo hai, she said ki bhai the protest ka aim jo hai is to save democracy and expressed her commitment to the agitation. Now, काफी सारा जो है दिखा गया, डिटेंशन वगैरह और इस तरह की चीजें देखी गई. सो कंगना जी का जो रिएक्शन है, उन्होंने कुछ ऐसा कहा कि भाई इन्होंने इतना पहुंच तो गई, वो कर इतना सब कुछ रही है, लेकिन बता तो दो कि किस वजह से तुम वहां पर हो. बिकॉज जया आंटी ने गुस्से में एज यूजुअल हटा दिया. She pushed away the microphone and she was refusing to explain the matter, which went, of course, viral on social media. And Kangana Ranaut on her Instagram story, she wrote that when you sit on dharna so that you can make a point in front of the whole world, but when they ask you what the point was you want to make, Jaya Bachchan ji would be like, "Nahin bataungi, jao." I don't know कि मतलब कौन किसको क्या ही बोले. मतलब ये लोग खुद ही खुद एक दूसरे को बोलते हुए जा रहे हैं. पहले ये दोनों ही एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में है, अब ये दोनों ही पॉलिटिक्स में एंटरटेनमेंट हो रहा है हम सभी का. मतलब दिस इज मी मिंसिंग माई वर्ड्स, ट्राइंग माई बेस्ट कि कुछ ऐसा ना निकल जाए जो मुझे नहीं बोलना चाहिए. और यही वो वक्त और क्षण होता है दोस्तों जब हमें गाना प्ले कर देना चाहिए अगला. दर्शन रावल एंड कमिंग अप नेक्स्ट इज दिस वाला गाना. भाई माहौल नवरात्रि का धीरे धीरे एकदम ऐसे बनते रहना चाहिए बीच बीच में. क्या कहते हो? गुड इवनिंग.
5: ए जय माता जी. माता जी ना हम कहीं ना कहूं कि वाह फरे वादल फरे ने वायरो फरे पण एक बार बोले पछि मारा मित्रों आ मित्रों कदी ना फरे के हालो ने

हाँ जी, हाँ जी, एक बहुत ही अच्छा कार्डियो का तरीका बताती हूँ कि जहां पे हार्ट बीट भी तेज हो जाएगी, आपकी नहीं आपके पार्टनर की. वो कहा शॉपिंग कराने लेके जाइए ऑटोमेटिकली. देखिए स्टेप्स के स्टेप्स हो जाएंगे और पार्टनर के हेल्थ का जो हार्ट हेल्थ है उसका भी काफी अच्छा सोल्यूशन है. क्योंकि आप जहां जाए जैसे जैसे जिस जिस स्टॉल पे जाएंगे और हर स्टॉल पे जाके कहेंगे कि भाई यहाँ से ये ले लेते हैं, वो ये भी मेरे पास नहीं है, तो वो हार्ट बीट उनकी तेज होगी. और ऐसे ही मतलब ऐसे कमाल के आइडियाज के लिए बीच बीच में आते रहिए जो है मेरे पास. नहीं, रेडियो बस्ती 24/7 अंतर आपके साथ. यहाँ पर भाई दीपावली एंड शॉपिंग गोज हैंड इन हैंड और करना बनता भी है यार, पूरा हक बनता है हमारा. जैक सलाम इंडिया की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ एंड शॉपिंग के साथ इस बार देर इज अ होल लॉट मोर विच दे आर डूइंग. दे आर एक तो सेलिब्रेटिंग 10 days ऑफ दीपावली डिस्काउंट सेल. ओके, इट्स द 43rd. इट्स दे आर ऑल्सो सेलिब्रेटिंग 20th एनिवर्सरी जैक सलाम इंडिया का. ठीक है, 16th to 25th ऑफ अक्टूबर सिंगापुर एक्सपो हॉल 9 Foyer 3 में हो रहा है. फ्रॉम फैशन टू द फेस्टिव शॉपिंग फूड कॉम्पिटिशन एंटरटेनमेंट और हाँ शॉपिंग करते करते यू कैन इवन गेट अ चांस टू फ्लाई. फ्री एयर टिकट्स जो है वहां पे जीतने को मिल सकते हैं, प्लस स्मार्टफोन, एप्पल वॉच, सो मेनी मोर एक्साइटिंग प्राइसेस. बेसिकली आप शॉपिंग करने के लिए आए थे और हो सकता है हॉलीडे लेकर वापस जा रहे हो, है ना, कमाल की बात. मैं हमेशा ही अच्छी बात करती हूँ, मैं कब होता है कि एक बुरी बात करती हूँ. कमाल की चीजें सिंगापुर में होती है बताओ, मैं आपको देती हूँ. 16th to 25th अक्टूबर सिंगापुर एक्सपो हॉल 9 Foyer 3. बेस्ट पार्ट क्या है, एंट्री है फ्री. फ्री फ्री फ्री सुनते ही कैसे कैसे एकदम चेहरे पे हमारी स्माइल आती है, लाइक ईयर टू ईयर. सो जैक सलाम इंडिया यहाँ पे बात कर रही हूँ. कम फॉर द डील्स, स्टे फॉर द फन एंड हु नोस, लीव विद अ टिकट टू फ्लाई टू योर नेक्स्ट डेस्टिनेशन. और फिर आप मुझसे आके कहोगे कैसे हुआ, कैसे हुआ अंतरा, मैं क्या बताऊ, मैंने बता दिया कैसे हुआ, आप फिगर आउट करो. गाना कमिंग अप नेक्स्ट, विशाल मिश्रा की आवाज.

0: 10 का 20 10 का 20 10 का 20 10 का 20।
1: अरे अरे अब बस 10 से दिल कहाँ भरेगा। मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है। टाइम टू रेज द बार रम्मा मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक फुल ऑन रेणुका स्टाइल। Now, pumping up your Thursday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rockstar Renuka with the week's top chart busters. Is Deepavali shopping bhi, celebration bhi, aur exciting prizes jeetne ka mauka bhi? Zaxxalam India, the Family Expo is back with its grand 43rd edition, celebrating 20 amazing years. Enjoy 10 days of Deepavali discounts, Indian shopping, delicious food, competition standya, cultural entertainment and family fun. 16th se 25th October tak, Hall 9, Foyer 3, Singapore Expo mein. Entry is free, free, free. So bring your family and celebrate the spirit of India at 43rd edition of Zaxxalam India, the Family Expo. The biggest Deepavali discount sale of the year. For more info, log on to www.zaxxalamindia.com.
2: Baju.
3: Traffic update.
4: आओ जी आओ, 6:32 हो चुके हैं, सड़कों पे जाते हैं, पता करते हैं क्या है सिंगापुर के ट्रैफिक अपडेट का हाल। व्हीकल ब्रेकडाउन आपको मिलेगा ऑन क्रॉस स्ट्रीट टुवर्ड्स रॉबिन्सन रोड आफ्टर राफल्स की, अवॉइड करें मेन नंबर 4। हैवी ट्रैफिक आपको मिलेगा ऑन PIE टुवर्ड्स शांगी एट KPE एक्सिट, और मिलेगा हैवी ट्रैफिक ऑन AYE टुवर्ड्स MCE एट जरोंग टाउन हॉल रोड एक्सिट। वेल ये था इस खंड का ट्रैफिक अपडेट। यहाँ पे क्विक सी भाई, किसी ने कहा है कि ये वाला गाना एक रेट्रो, मतलब ठीक है अंतरा वेंसडे है कोई बात नहीं, बट चलेगा क्या? मैंने कहा चलेगा क्या मतलब होता है, मतलब बोल दिया है अब तो चलाना है ना, तो चलाते हैं, एंजॉय करते हैं, लिटिल बिट ऑफ रेट्रो। नेवर हार्म्ड एनीवन, नेवर एवर, कैन नॉट। ऊपर से ये गाना, कोई मुझे बता सकता है ये गाना किस पे पिक्चराइज है? अच्छा पहले प्ले करने दो, फिर मुझे बताना किस पे पिक्चराइज है ये गाना।

0: Whatever you do, always give 100%. Unless you are donating blood. ये है मिडवीक ब्लूज़ ऑन रेडियो मस्ती 24/7. आओ मूड चेंज कर चेंज कर चेंज.
1: Yes, yes, that's right. Amitabh Bachchan. सही जवाब. Radio Masti 24/7 अंतर आपके साथ. Midweek Blues चल रहा है. Imagine someone looking at हमारे बच्चन साहब and saying, boss, ये हीरो मटेरियल तो नहीं लग रहा. हेलो एक्सक्यूज मी, कौन हो आप, कौन हो और क्यों हो. मोर देन दैट, वेल आज की डेट में ये सुनकर बहुत ही अनबिलीवेबल सा लगता है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द अमिताभ बच्चन, द हाइट, द फेस, द वॉइस, द स्क्रीन प्रेजेंस, द ऑरा, एवरीथिंग दैट बिकेम आइकॉनिक. बट अपेरेंटली करियर के शुरुआत में यही चीजें उनकी प्रॉब्लम का बताई गई थी. भाई जो है बच्चन साहब ऐसे ही याद कर रहे थे उन दिनों को, बता रहे थे दैट व्हेन ही वाज ट्राइंग टू गेट वर्क एंड प्रोड्यूसर्स जो है उनको ये कह रहे थे कि भाई तुम लंबे बहुत हो, कोई हीरोइन तुम्हारे साथ काम नहीं करना चाहेगी. एंड देन देयर वाज दिस रादर स्पेसिफिक क्रिटिसिज्म फॉर हिम दैट योर फेस लुक्स टू स्मॉल कंपेयर्ड विद योर बॉडी. या कहानी का बेस्ट पार्ट पे तुम्हें आई नहीं है. सो यू नो दैट हमारे बच्चन साहब जो है उनका हेयर स्टाइल फ्रॉम द 70s, इफ यू रिमेम्बर, थोड़े से लंबे लंबे बाल, दोज अनमिस्टेकेबल साइड बोन्स जो है उनके दिखते थे. एक टाइम पे पूरा इंडिया उनको कॉपी कर रहा था. नाउ टर्न्स आउट अकॉर्डिंग टू बच्चन साहब इट डिड नॉट एक्चुअली बिगिन एज अ फैशन स्टेटमेंट. उन्होंने बताया बिकॉज पीपल केप्ट सेइंग कि उनका फेस जो है उनके बॉडी के कंपैरिजन में छोटा लगता है, तो उन्होंने अपने बाल नीचे की तरफ डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स हिज टेम्पल्स ही स्टार्टेड डूइंग दैट, सो हिज फेस वुड अपीयर अ लिटिल बिट फुलर. एंड वही हेयर स्टाइल इवेंचुअली बिकेम द पार्ट ऑफ बच्चन साहब का लुक एंड पीपल वॉन्टेड टू इमिटेट इट. अब आप देखिए लाइफ का सेंस ऑफ ह्यूमर कितना कमाल का है. नहीं, जिस हाइट को कहा गया प्रॉब्लम है, दैट टावरिंग प्रेजेंस बिकेम हिज आइडेंटिटी. जिस शक्ल में लोगों ने प्रॉब्लम निकाली, वो फेस बिकेम वन ऑफ द मोस्ट रिकग्नाइजेबल फेसेस इन इंडियन सिनेमा. एंड दिस वॉज नॉट द ओनली रिजेक्शन, वी ऑल नो अबाउट इट, राइट. बच्चन साहब हैड प्रीवियसली रिकॉल्ड कि भाई ऐसा भी उनको, मतलब इनके मुंह पे कहा गया है कि तुम बहुत लंबे हो, तुम तो वापस चले जाओ घर. एंड उनकी आवाज के लिए भी उनको ऐसा कहा गया था कि भाई ये तो नहीं चलेगा, ये आवाज नहीं चलेगी. नाउ बीइंग क्रिटिसाइज्ड फॉर हिज एक्टिंग एंड डायलॉग डिलीवरी ड्यूरिंग दोज स्ट्रगलिंग इयर्स, वी थिंक दैट अ लेजेंड बिकम्स अ लेजेंड क्योंकि हम उनको आज की डेट में ऐसा लेजेंड बना. बट इस तक का सफर जो उनका रहा है, everybody had their own fair share of battles and criticisms which they have faced. Why they are a legend? Because they overcame, they kept moving on, and he's still working. Dude, look at him, look at his age, he works more than us. I always say ki bhai main unki age mein jaake main bhi itni hi zyada working aur active rehna chahti hu. I want to be like that. It is so inspiring, totally totally totally admirable, so very well. Doo bhi gayi main inki baat karte karte, but let's do some doo in the next gana coming up for you.

0: और खबर मिली है कि दुनिया में लोग फार्ट बॉटल में खरीद रहे हैं।
1: क्या लोगों के पास पैसे ज्यादा है या दिमाग कम? मस्ती मैडनेस, जहां न्यूज भी होती है गैस्ट्रोनॉमिकल।
2: तैयार हो जाइए, जब ढोल बजेगा डांडिया खनकेगा और पूरा सिंगापुर बोलेगा इट्स टाइम फॉर सिंगापुर। गुजराती सोसाइटी प्रेजेंट्स सिंगापुर्स ट्रूली ओरिजिनल नवरात्रि 16th, 17th and 18th October at the new grand and stunning Laguna Ballroom, Dusit Thani Laguna. Three spectacular nights of Garba Dandiya tradition and celebration. Complimentary shuttle available too. Tickets $25 onwards almost sold out, but you can still win yours with Musti. Book now at sgs.org.sg/navratri2026. Singapore Gujarati Society presents Singapore's truly original

0: Navratri tradition, togetherness, celebration. Take a break, laugh a little, and vibe a lot because weekend is almost here. Midweek Blues on Radio Masti 24/7. Aao, mood change kare.
1: थिंग अबाउट दिस फेस्टिव सीजन इज कि ना ही सिर्फ खाना, यहाँ पे तो मिठाइयों की भी बात शुरू हो जाती है. ये वही सीजन है दोस्तों जहाँ पर यमी यमी मिठाई की बात होगी. रेडियो मस्ती 24/7 ऑन ट्रैप के साथ यहाँ पर चल रहा है ऑफ कोर्स मिडवीक ब्लूज. और ये बात करते हुए मुझे कोई भी ब्लूज नहीं आने वाले हैं. ना दिवाली में सिर्फ मिठाई खाई नहीं जाती है, पहले आंखों से चूज होती है, फिर दिल से गिफ्ट की जाती है, एंड फाइनली डब्बा खुलते ही सब डिसाइड करते हैं कि अच्छा मेरा वाला कौन सा है. एंड दिस दिवाली शाही महारानी, that's right, that's the correct and the royal name I had to talk about this evening, is making that decision seriously very very difficult like every single time. अपने दिवाली festive collection, sweets का festive collection 2026 लेकर, a legacy of sweet traditions. Imagine एक box opening to freshly handcrafted preservative free मिठाई made by their halwai with carefully selected vegetarian and halal certified ingredients, flavors ट्रेडिशनल भी है, थोड़ा सा हटके भी. देर इज दिस न्यू ट्रॉपिकल सनराइज विच इज अ कोकोनट एंड पाइनएप्पल लड्डू. Can you imagine the flavors? I can. So it's coconut with fresh pineapple and then proper tropical Diwali vibes total. Then there is Gram and Gur Delight, and then you have got their date and nut barfi, stuffed cashew rolls, and their much loved classics like milk cake and mango surprise. Ab gifting ki baat kare तो शाही महारानी has really really as always dressed Diwali up beautifully, from celebration box to royal festive box to the indulgent treasure sugar and spice box. Mera favorite hai, for every time gifting I get that box. It has 15 varieties of mithai, प्रीमियम सेवरीज, एंड उसका पैकेजिंग इज द बेस्ट. मतलब कि मैं क्या ही बताऊं. सिलेक्टेड कलेक्शंस जो है, इट इज गोइंग टू इंक्लूड अ स्पेशली डिजाइंड आर्टिसन कैंडल एज वेल, जो कि रूरल इंडियन विलेजेस से जो है क्यूरेट होकर आया हुआ है. सो योर दिवाली गिफ्ट इज एक्चुअली स्प्रेडिंग अ लिटिल लाइट बियॉन्ड योर ओन होम. एंड इफ यू आर थिंकिंग कि ओके अंतरा, ऑर्डर कब और कहां करना है? सी भाई, अभी ऑर्डर करोगे तो बेनिफिट में रहोगे. अर्ली बर्ड का ऑफर इज ओनली टिल 11th ऑफ अक्टूबर. सो गिफ्टिंग लिस्ट जो कल करेंगे वाली लिस्ट में डालना था वो मत रखिए. फॉर योर होम एंड योर दिवाली टेबल, फ्रेंड्स फैमिली एंड कॉर्पोरेट गिफ्टिंग एज वेल, चूज शाही महारानी के स्वीट्स. एंड शाही महारानी .com पर जाएं, वहां पर जाकर रॉयल दिवाली स्वीट्स का ऑप्शन सेलेक्ट करें, एंड यू कैन जस्ट सी एवरीथिंग ओवर देयर. सो दिस दिवाली डोंट जस्ट सेंड अ मिठाई का डब्बा, send something handcrafted, thoughtfully packed and made to be remembered. Ah, Shahi Maharani bringing a little royalty aapke Diwali mein. Loving it. Mera damba abhi karte order.

0: का पुरुष ही नहीं, महापुरुष है, महापुरुष।
1: वेंसडे को मूड डाउन हो गया, कोई बात नहीं, हमारे पास उसका भी जुगाड़ है। मिडवीक ब्लूज, जहां काम की चिंता छोड़ो और हमारे साथ मस्त हो जाओ। फिल्मी बातें, मस्ती मोमेंट्स, थोड़ा छेड़ना और पंगे लेना भी, क्योंकि लाइफ सिर्फ काम के लिए नहीं है मेरे दोस्त। ट्यून इन एंड पावर थ्रू द वीक विद मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7। आओ मूड चेंज करें।

0: Whatever you do, always give 100%. Unless you are donating blood. ये है मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7. आओ मूड चेंज करें.
1: 7 बजे के उस पार बिल्कुल पहुंच चुके हैं. गुड इवनिंग, नमस्ते. रेडियो मस्ती 24/7 अंतर आपके साथ यहाँ पर चल रहा है मिडवीक ब्लूज. अभी किसी से बात हो रही थी प्रोटीन के ऊपर. आजकल प्रोटीन का डिस्कशन इतना इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो चुका है कि मैं क्या ही बताऊं. आपकी जिंदगी में अचानक से आप रियलाइज करते हो बहुत सालों बाद कि प्रोटीन जो चीजें हैं सिर्फ अब किताबों में नहीं रही है, अब वो हमारी जिंदगी में घुल चुकी है. आप कहीं पर भी जा रहे हो आप प्रोटीन मांग रहे हो. बट प्रोटीन में क्या है? नहीं, मेरा आज की डेट का पूरा नहीं होगा तो मुझे घर जाके प्रोटीन शेक पीना पड़ेगा. लाइक वेयर डिड दिस कम फ्रॉम? एंड दिस आई एम सेइंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू दैट आई हैव आल्सो बिकम दैट काइंड ऑफ अ पर्सन राइट नाउ, दैट एवरीवेयर आई लुक फॉर प्रोटीन. आई मीन व्हाई डू आई हैव टू लुक फॉर प्रोटीन? बट Having given that, मैं खबर लेके आई थी, ऐसा कुछ नहीं है. बट देन ये अचानक से किसी ने वापस से मुझे पूछा और वो जो है कॉन्वर्सेशन और मेरी दिली तमन्ना जो है वो जाग गई. वी ऑल आर टॉकिंग अबाउट कि इसमें प्रोटीन, हर चीज में प्रोटीन डाल दे रहे हैं बिकॉज पीपल वॉन्ट. कि एक देखो मार्केटिंग कैंपेन तो तैयार हो ही जाता है एंड पीपल आर मोर लीनिंग टूवर्ड्स इट. ये सारी बात है तो एक जगह मैं कह रही हूँ कि यार कोई साइंटिस्ट रिसर्च करके आजकल आज की डेट में कुछ भी पॉसिबल है. आलू में अगर प्रोटीन निकाल दो, मतलब डाल दो निकाल दो, व्हाटएवर, आई एम ओके विद बोथ. ठीक है, उस आलू की बना दो आलू भुजिया, है ना. आलू भुजिया में मैं कहती हूँ प्रोटीन डाल दो, फिर आप देखो, मतलब ये जो है ना ऐसा चलेगा कि मतलब आप कितना प्रोटीन लोगे, आप लेते ही जाओगे. नहीं है ना, कमाल का सेंसेशनल आइडिया आ गया है मुझे ऑल ऑफ अ सडन ऊपर से कि आलू भुजिया में प्रोटीन निकाल दो. ओहो हो, क्या बात है. इट इज सच एन अडिक्टिव स्नैक. आई मीन एक होती है नॉर्मल, आई एम टॉकिंग अबाउट आलू भुजिया, वो जो फ्लेवर वाली होती है, आपका हाथ ऑटोमेटिकली उसकी तरफ जाता है. इवन मतलब कहना पड़ता है कि इसको हटा लो मेरी नजरों के सामने से. आई डोंट ब्रिंग स्नैक्स इन माई होम बिकॉज ऑफ द टेंडेंसी कि खुलते ही अगर मिल जाएगा तो फिर तो वो खत्म होके रहेगा. या ये हालात चल रहे हैं जिंदगी में. बट देखो आइडिया तो अच्छा है ना, आप अग्री करोगे. आलू भुजिया में प्रोटीन निकाल दो, बेस्ट है, बेस्ट, आई एम टेलिंग यू. पानी पूरी में प्रोटीन निकाल दो यार, कमाल ही हो जाएगा फिर तो, है ना. आलू ओके, आई शुड स्टॉप माय इमेजिनेशन, कहीं पर तो कंट्रोल कर सकते हैं. बट वेल, खबर कुछ और मैं देने वाली थी. उस खबर के लिए आप हमारा फेसबुक पेज भी जाके चेकआउट कर सकते हैं क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है, कहीं पर तो कुछ दिख गया है. फिलहाल लो चाहे उल्फत में डूब जाते हुए अगला गाना आके लिए ऑन रेडियो मस्ती 24/7. गुड इवनिंग. निकाले आलू भुजिया में प्रोटीन.

0: This is Radio Masti 24/7 Live, the only local connect with global expat Indians. Anytime, anywhere.
1: Some invitations are simply too stylish to miss. This October, High Life Exhibition returns to Singapore, bringing you a curated world of Indian fashion and lifestyle. Discover festive wear, bridal couture, jewelry, accessories and home decor from designers across India and Singapore. 13th and 14th October, 10 a.m. to 8 p.m. at Holiday Inn Singapore, Orchard City Centre. High Life Singapore, 2 days, endless style, one destination.
2: It's a Masti Partner event.
3: और खबर मिली है कि दुनिया में लोग फार्ट बॉटल में खरीद रहे हैं।
4: क्या लोगों के पास पैसे ज्यादा है या दिमाग कम? मस्ती मैडनेस, जहां न्यूज भी होती है गैस्ट्रोनॉमिकल।
1: Take a break, laugh a little, and vibe a lot because weekend is almost here. Midweek Blues on Radio Masti 24/7. Our mood change kare.
5: Well, welcome back to Radio Masti 24/7. Midweek News chal raha hai, antra hai aapke saath. And London ki sadkon par red double decker bus, black cab, ye sab to expected hai. But ek Mahindra ki three wheeler, plot ka twist yahi pe aa jata hai. Apparently, Anand Mahindra had exactly that kind of reaction when he spotted something very familiar cruising through London ki sadak. And yeah, that was a three wheeler. Video share karte hue unhone Gujarati mein proudly mein wahan pe likha that यूके में रिक्शा आ भी गई छे महिंद्रा नीचे आपना, मतलब यूके में रिक्शा आ गया है और महिंद्रा का है अपना है. एंड आई लव दैट यू नो द लिटिल बिट ऑफ दैट दिस टच. आई लव एवरी सिंगल पार्ट ऑफ इंडिया, लेट मी टेल यू. तो इतना स्वीट लगता है ना, हर लैंग्वेज कितनी डिफरेंट है, कितनी अपनी सी लगती है. एक बिजनेसमैन का रिएक्शन कम और किसी प्राउड इंडियन का रिएक्शन काफी फील होता है कि ये देखो अपना वाला लंदन पहुंच गया है. Now reports ऐसा suggest कर रहे हैं that this particular three wheeler may have reached Britain through एक personal import के जरिए. So no, अभी London is की जो black cabs है उसको replace करके these rickshaws are not over there. But still think about the visual for a second. I don't want you to think about it also. You can go and watch it. हमारे Facebook पर posted है page पर and you can see. And एक vehicle जो हम India में रोज देखकर perhaps एक second glance भी नहीं देते हैं, वो central London की streets पर suddenly, of course, it becomes the head turner. And somewhere that also tells you that how dramatically the perception of made in India has changed, from automobiles and technology to fashion, food and entertainment. Indian brands and ideas jo hai, they are showing up in places jahan pe perhaps ek generation pehle, kai generation pehle also, we wouldn't have imagined seeing them. Bas yehi ekdam little bilkul dil se desi wala jo feel aata hai out. I just love it, completely love it. Radio Masti 24/7 par jab ho chuke hai 7:19, ab chaliye play करते हैं बापिदा साथ में श्रेया घोषाल. चटपटा गाना कहेंगे इसको, बिल्कुल. कमिंग अप नेक्स्ट फॉर यू ऑन रेडियो मस्ती 24/7.

आइए ऐसा प्लान बताएंगे कि दिल आपका भी उल्लाला करने लगेगा। हाउ व्हेन व्हाट वेयर लेट मी टेल यू। भाई मुहूर्त निकल चुका है 7:24 का और इस मुहूर्त पर जो अंतर आपको बताने वाली है सुन लीजिए, सुन के उस पर अमल भी कर लीजिएगा। गोल्ड अगर खरीदने का प्लान है और हमेशा आप ऐसा सोचते हो कि रेट थोड़ा और नीचे आ जाए तो तब लेंगे, है ना, सही मौके का इंतजार रहता है। वेल दिस फेस्टिव सीजन जायलोकाज हमारे वर्ल्ड फेवरेट ज्वेलर वो बेसिकली कह रहे हैं रेट का स्ट्रेस जो है साइड में रखिए, ज्वेलरी पहले चूज कर लीजिए। इंट्रोड्यूसिंग जायलोकाज का फेस्टिव प्राइस प्रॉमिस जहां पे यू कैन प्री बुक आपकी ज्वेलरी बाय पेइंग जस्ट 10% एडवांस एंड गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम द गोल्ड प्राइस का फ्लक्चुएशन। सी सिंपल है, गोल्ड प्राइस गोज अप आप प्रोटेक्टेड है एट द लोअर बुक्ड रेट एंड इफ गोल्ड प्राइस ड्रॉप्स यू गेट द बेनिफिट ऑफ द लोअर रेट। मतलब फेस्टिव ज्वेलरी शॉपिंग में हेड्स भी आपकी टेल्स भी आपकी, ओ माय गॉड। एंड देयर इज समथिंग एक्स्ट्रा फॉर द ऐप यूजर्स एज वेल। अगर आप यूज करते हैं फर्स्ट बुकिंग थ्रू द जायलोकाज मोबाइल ऐप, आप रिसीव करते हैं एक $100 का डायमंड गिफ्ट वाउचर। एंड ऐप ऑफर जो है ऑन एडवांस बुकिंग्स इज अवेलेबल टिल 21st of October एंड योर 10% एडवांस बुकिंग इज वैलिड अंटिल 7th November। सो वेदर यू आर शॉपिंग फॉर द फेस्टिव सीजन, किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं और सिंपली यू हैव दिस आई ऑन वन पीस जो बार बार याद आ रहा है, दिस माइट बी द टाइम टू लॉक इट इन। सो ज्वेलरी चूज कीजिए, 10% एडवांस में पे कीजिए एंड लेट द फेस्टिव प्राइस प्रॉमिस टेक केयर ऑफ द गोल्ड रेट वरी। जायलोकाज वर्ल्ड फेवरेट ज्वेलर है ना। ओ लाला से सैफायर की तरफ चलते हैं, खरीद ही लेते हैं, क्या कहते हो।

0: Whatever you do, always give 100%. Unless you are donating blood. ये है मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7. आओ मूड चेंज कर चेंज कर चेंज कर चेंज कर चेंज
1: कर चेंज कर चेंज कर भाई लोगों, कुछ भी चल रहा है इंडिया. अब मैं बता रही हूँ कि मतलब ओके लिसन टू मी, रेडियो मस्ती 24/7 अल्ट्रा आपके साथ यहाँ पर चल रहा है मिड वीक ब्लूज. ऐसी बातें सुन के कहाँ से तो ब्लूज आएंगे. सो दिल्ली बेस्ड एक सीए जो है उन्होंने अपनी एक दुकान खोली है एंड ही इज सेलिंग दिल्ली में. ही हैज इंट्रोड्यूस्ड दिस आयुर्वेदिक समोसास. Ayurvedic samosas. भाई ही केम अप विद दिस आइडिया बाई लुकिंग फॉर अ वे कि भाई इस पॉपुलर स्नैक को कैसे इजी टू डाइजेस्ट एंड लाइटर ऑन द स्टमक वैसे करके करे. एंड ही सेड दैट भाई इनका जो लव फॉर समोसाज है लेड हिम टू एक्सप्लोर हाउ ट्रेडिशनल हर्ब्स एंड स्पाइसेस बेसिकली उसको कैसे इनकॉर्पोरेट करके इसका प्रेप किया जाए. देन ही डेवलप्ड समोसा आफ्टर कंसिडरिंग हाउ पॉपुलर फ्राइड स्नैक कुड बी मेड मोर कंफर्टेबल. फिर क्योंकि रेगुलर हैवी एंड ऑयली फूड आपको तो सबको पता ही है कॉज प्रॉब्लम्स जैसे गैस होती है, एसिडिटी हो जाती है एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स. तो एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया. दिस समोसा अपेरेंटली इज मेड विद बॉइल्ड पोटेटोज एंड लाइट स्पाइसेस अलोंग विद ग्राउंड क्लोव्स एंड अजवाइन एंड कसूरी मेथी एंड काफी सारा कुछ चूरन वूरन एंड और दो तीन चीजें उन्होंने यहाँ पे लिख रखी है जो कि डाइजेशन के लिए काफी अच्छा होता है. एंड दीज इंग्रीडियंट्स आर ट्रेडिशनली एसोसिएटेड उस हिसाब से आयुर्वेदा में भी. 20 रुपए के भाई साहब दो समोसे मिलते हैं सर्वड विद गार्लिक टमेटो की चटनी. क्या कहना है आपका इस आयुर्वेदिक समोसे के बारे में. मैं कहती हूं देखो ये एंड दिस इज माय वेरी पर्सनल ओपिनियन, कुछ कुछ ओजी यानी कि ओरिजिनल चीजें ना उनको वैसे के वैसे रख देना चाहिए. तो मतलब ठीक है आप, मैं तो द थिंग इज दैट समोसा इज वन ऑफ माय एवरी इंडियंस फेवरेट स्नैक राइट. यार जब तक वो मतलब अंदर वो मसाले वाला जो आलू है एंड दैट इज आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द येलो आलू ओवर हियर, मैं कह रही हूँ वो जो सफेद आलू वाला मसाला होता है जो जबरदस्त चटपटा होता है एंड तीखा होता है अंदर से एकदम एकदम फील वाला. एंड देन वो जो एकदम मस्त फ्राई होकर बड़ी सी कड़ाही से एकदम निकलता है ना वो छन के, जहां में नीचे टप टप वो छन्नी से नीचे तेल टपक के गिर रहा होता है, वो ऊपर थोड़ी देर तक हवा में रखते हैं उसको थोड़ा सा जैसे यू नो कह रहे हैं, एंड वो जो खुशबू आती है वो जो करारापन आता है और जैसे वो आप तोड़ते हो उसमें इसका ना मजा अलग है. एंड मैं तो पनीर भी उसमें कोई डाल देता है या मटर डाल देता है मुझे बड़ा वैसा कि ये क्या किया. नहीं नहीं समोसा एंड आलू लाइक द नॉर्मल प्यारा प्यारा. अगर इसका एक और वर्जन विच आए समोसे का लाइक इज द मिनी समोसास अगेन विद द सेम काइंड ऑफ फिलिंग. क्या होता है कि बड़े बड़े कभी वो तो एकदम फटाफट से छोटे छोटे जो है ना आयुर्वेदिक समोसास. आई डोंट थिंक सो, आई एम नॉट दैट मच अप फॉर इट. बट देन या ऐसी भी चीजें हो रही है दुनिया में, पता होना चाहिए.

0: Theatre, Radio Masti 24/7 Live. Keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.
1: याद आ गया बीच में ही कि यहाँ से जाना भी तो है, गाना ही सुनती रहोगे तो कैसे चलेगा अंतरा। रेडियो मस्ती 24/7 पर अंतरा आपके साथ यहाँ पर थी। बहुत सारी कुछ हमने यहाँ पे बातें करी एंड इंफॉर्मेशन एंड इवेंट्स एंड ये सारी की सारी। अब लेना चाहती हूँ आपसे परमिशन, बट म्यूजिक इज नॉट गोइंग एनीवेयर, यू नो दैट राइट? सो यू स्टे हैप्पी, स्टे फेस्टिव एंड वेयर एवर यू गो हमको हमेशा साथ में रखना, हम आपको हमेशा ही एंटरटेन रखेंगे। अब आपसे होगी कल सुबह मुलाकात 11 बजे, क्योंकि कल मेरा 90s वाला दिन है। सो तब हम लोग कप्पे उप्पे मारेंगे, 90s के दरों में डूब उब जाएंगे, डूब के फिर यहाँ बाहर भी तो आना ही पड़ेगा। यहाँ से अभी चलते हैं, अभी हमारा जिम का टाइम हो चुका है। जी हाँ, यहाँ से जाएंगे, वहां पर इंतजार हो रहा है हमारा। क्या हो बेटा, पहले तो तुम यहाँ पे खड़ी हो, देखें आज तुम्हारा क्या हाल है। ऊपर से आज तो है लेग डे, मतलब मैं क्या ही बोलूं। हाउ एक्साइटेड डू आई साउंड, राइट? एवरीबॉडी शुड साउंड एक्साइटेड ऑन अ लेग डे। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, यू हैव अ फैंटास्टिक इवनिंग अहेड। अंतरा इज साइनिंग ऑफ।

एक देहाती सर पे गुड़ की भेली बांधे लंबे चौड़े एक मैदान से गुजर रहा था। गुड़ की खुशबू सुन के भिन भिन करती एक छतरी सर पे मंडलाती थी। धूप चढ़ी और सूरज की गर्मी पहुंची तो गुड़ की भेली बहने लगी। मासूम देहाती हैरान था, माथे से मीठे मीठे कतरे गिरते थे और वो जीभ से चाट रहा था। मैंने देहाती मेरे सर पे ये टैगोर की कविता भेली किसने

सामने चूल्हा जल रहा है, धुआं आंखों में लग रहा है, जलन भी है आनंद भी। बस आते ही होंगे, जल्दी से संध्या पूजा हो जाए। जानती है वो क्या कहेंगे।

सिरहाने को छोड़ाया, तोड़ाया ख्वाब किसी का, जाने क्या छोड़ाया, जाने क्या।

0: आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: एक्सपीरियंस लाइफ इन ऑल पॉसिबल वेज, गुड बैड बिटर स्वीट डार्क लाइट समर विंटर, एक्सपीरियंस ऑल द ड्यूअलिटीज। डोंट बी अफ्रेड ऑफ एक्सपीरियंस, बिकॉज द मोर एक्सपीरियंस यू हैव द मोर मैच्योर यू बिकम। नमस्कार आदाब सत श्री अकाल वेलकम स्वागतम खैर मकदम। आप सोचेंगे कि आज समर को क्या हो गया, आते ही बड़ी समझदारी की बातें कर रहे हैं। वेल, ये जो मैंने कहा ओशो का ये स्टेटमेंट है और आज इसी से शुरू करने जा रहा हूं मैं आज का अपना ये शो जिसका नाम है लेजेंड्स, जिसके जरिए हम लेजेंड्स की जिंदगी जीने की महज कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्होंने जो जिया उसे पूरी तरह से छुपाना तो मुश्किल है पर कोशिश जारी है मेरे दोस्त। तो चलिए पहेलियां बुझाना मैं बंद करता हूं और आज हम जिस शख्स की बात करने जा रहे हैं सीधे उनसे आपको रूबरू कराता हूं। उनके लिए मैंने एक लेटर चुना है एस, हालांकि उनका नाम वी से शुरू होता है। अब आप कहेंगे तुम तो पहेलियां भी बुझा रहे हो यार, तो चलिए सीधे नाम बता देता हूं उनका मैं। आज के हमारे लेजेंड हैं विनोद खन्ना साहब, जिनकी जिंदगी के सफ़े हम पलटने वाले हैं आज। पहले ही पन्ने पर लिखा हुआ है स्टारडम सैचुरेशन स्पिरिचुअलिटी। स्टारडम के सबसे ऊंचे स्टेप पर था ये स्टार। एक दिन मुंबई के नटराज स्टूडियो में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बॉलीवुड की चमक दमक से भरी दुनिया को छोड़कर मन की शांति की ओर कदम बढ़ाने का फैसला पूरी दुनिया को सुना दिया। आचार्य रजनीश के आश्रम में जाकर खुद को तलाशने लगे, शायद वो उनकी सफलता का सैचुरेशन पॉइंट था। वो उससे दूर जाकर खुद में डूबना चाहते थे। सेल्फ इंटेलिजेंस के आरोप लगाए दुनिया ने उन पर, जिसे वो एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि आफ्टर ऑल एवरीवन हैज टू ट्रेवल अलोन, कम अलोन गो अलोन। परिवार नाराज हुआ, लेकिन अपनी सोल को खोजने और अपने माइंड पर कंट्रोल करने के लिए उन्होंने ये टफ डिसीजन लिया। वेल, विनोद खन्ना साहब की जिंदगी के कई और पन्ने भी हैं, हार्ट एंड सोल डालकर हमें इनकी कहानी को समझना होगा, क्योंकि सफलता का स्वाद चखकर उसे छोड़कर लौट जाना इतना आसान कहां होता है और हर किसी के बस की बात भी कहां है। फिलहाल मैं आपको यहां छोड़कर जा रहा हूं एक गाने के साथ, लौटूंगा मैं भी ठीक उसी तरह जिस तरह विनोद खन्ना साहब लौटे एक बार फिर से बॉलीवुड में। आप सुनते रहिए सिंगापुर का एकमात्र हिंदी रेडियो स्टेशन, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव समर के साथ।

0: You're tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping the world Bollywood entertained anytime, anywhere.
1: Some invitations are simply too stylish to miss. This October, High Life Exhibition returns to Singapore, bringing you a curated world of Indian fashion and lifestyle. Discover festive wear, bridal couture, jewelry, accessories and home decor from designers across India and Singapore. 13th and 14th October, 10 a.m. to 8 p.m. at Holiday Inn Singapore, Orchard City Centre. High Life Singapore, 2 days, endless style, one destination.
2: It's a Masti partner event.
3: सुनते रहिए लेजेंड्स फिर से समर के साथ.
4: वेलकम बैक, एसए समर आपके साथ है एंड एसए सिंगापुर आप सुन रहे हैं. एसए शो नाम है जिसका लेजेंड्स एंड ऑफ कोर्स ये है रेडियो मस्ती 24/7 लाइव. आज मेरे साथ दो एस हैं, सन यानी बेटा एंड सन यानी सूरज. कहानी है एक पिता की जो कभी नहीं चाहते थे कि उनका बेटा फिल्म्स में एक्टिंग करे. अपने बेटे के इस डिसीजन से इतने खफा थे कि उसे मारने के लिए उस पर बंदूक तक तान दी थी. लेकिन तब माँ बचाव में आई और थोड़े से वक्त की गुहार लगाई पिता से. जानते हैं पिता कौन थे? मुंबई के टेक्सटाइल्स, डाइज एंड केमिकल्स के मशहूर बिजनेसमैन किशन चंद खन्ना. और ये माँ थी कमला खन्ना और बेटा था विनोद खन्ना. बीच बचाव का नतीजा देखिए. उनका सन SON SUN यानी सूरज की तरह आकाश के माथे पर चमक उठा. थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएंगे और देखेंगे कि ये दौर था भारत पाकिस्तान के पार्टीशन का. सीमाओं के आर पार इंसानी लेन देन चल रहा था. इसी बीच 1946 में अक्टूबर के महीने में पेशावर में जन्मे विनोद खन्ना साहब. उनकी फैमिली इंडिया आ गई, घर पेशावर में ही रह गया. सेकेंड क्लास तक विनोद खन्ना ने अपनी शिक्षा मुंबई से की, फिर इनकी फैमिली दिल्ली शिफ्ट हो गई. 3S फिर नुमाया है मेरे मन की सिल्वर स्क्रीन पर, स्कूल, स्पोर्ट्स, स्टेज एंड ऑफ कोर्स सिल्वर स्क्रीन. दिल्ली पब्लिक स्कूल में विनोद खन्ना पढ़ रहे थे, स्पोर्ट्स में काफी अच्छे थे, खास करके फुटबॉल, क्रिकेट और टेनिस में. लेकिन तभी इनके एक टीचर ने स्कूल प्ले में पहली बार स्टेज से उनका तारुफ करवाया और ये सफर सिल्वर स्क्रीन तक जा पहुंचा. विनोद खन्ना साहब के फिल्मी नामे पर हम बाद में नजर डालेंगे, लेकिन मुझे एक और बात बतानी थी. विनोद खन्ना साहब ने 2 शादियां की. पहली पत्नी पारसी थी, गीतांजलि तालियार खान उनका नाम था. इनके इनसे 2 बच्चे हुए, अक्षय एंड राहुल. मगर विनोद के ओशो के आश्रम जाने के बाद इन दोनों का तलाक हुआ, मतलब विनोद और गीतांजलि का. विनोद जब लौटे तो उन्हें मिली कविता दफ्तरी. तो चलिए विनोद जी की कहानी को कविता के इसी सिरे से पकड़ेंगे. पहले सुनिए आप ये बेहतरीन नगमा और सुनते रहिए सिंगापुर का एकमात्र हिंदी रेडियो स्टेशन जहां पर समर आपसे आज बात कर रहा है एस की यानी सुपरस्टार विनोद खन्ना की. शो है लेजेंड्स, सो स्टे ट्यून्ड.

0: इस दीपावली शॉपिंग भी, सेलिब्रेशन भी और एक्साइटिंग प्राइजेस जीतने का मौका भी। Zaxxon India, the Family Expo is back with its grand 43rd edition, celebrating 20 amazing years. Enjoy 10 days of Deepavali discounts, Indian shopping, delicious food, competition standya, cultural entertainment and family fun. 16th to 25th October at Hall 9, Foyer 3, Singapore Expo Mein. Entry is free, free, free. So bring your family and celebrate the spirit of India at 43rd edition of Zaxxon India, the Family Expo. The biggest Deepavali discount sale of the year. For more info, log on to www.zaxxonindia.com.
1: आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
2: विनोद खन्ना साहब की जिंदगी को जी रहे हैं आप सिंगापुर के एकमात्र हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। मैं हूं आपके साथ समर, और समर आज अपने नाम के पहले अल्फाबेट एस के साथ विनोद खन्ना की जिंदगी को जीने की कोशिश कर रहा है। एस से सिंपल, स्पॉन्टेनियस, स्ट्रेट अवे, सबमर्ज्ड। हाँ, यही है विनोद खन्ना साहब। कैसे, अभी बताता हूँ। कविता से विनोद की पहली मुलाकात का किस्सा काफी इंटरेस्टिंग है। कविता उस वक्त 28 साल की थी जब उन्हें विनोद खन्ना से मोहब्बत हुई थी। एक पार्टी में दोनों मिले। कविता को विनोद बहुत सिंपल लगे। कविता थी बहुत लिटरेट, बहुत पढ़ी लिखी। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में वो पढ़ी थी। एक बहुत ही डिफरेंट बैकग्राउंड से थी वो। कविता विनोद खन्ना को यूं ज्यादा नहीं जानती थी। उन्होंने अमर अकबर एंथनी, आन मिलो सजना ही देखी थी, लेकिन इसे ही डेस्टिनी कहते हैं ना, उनको तो मिलना था। कविता इससे पहले किसी पार्टी में गई नहीं थी और न ही उसके बाद गई, लेकिन विनोद उनसे इंप्रेस हो गए थे और विनोद ने उनसे फोन पर बात करना शुरू किया। वो उन्हें दिन में कम से कम 5 बार कॉल किया करते थे, लेकिन वो कहीं भी बाहर उनके साथ नहीं जाना चाहती थी। विनोद खन्ना ने कई बार कहा कि चलो कहीं घूम आते हैं, डेट पर चलते हैं, लेकिन वो साफ मना कर देती थी। फिर एक दिन तय हुआ कि वो रोज सवेरे जॉगिंग पर मिलेंगे, और शादी तक वो हर रोज जॉगिंग करते थे एक दूसरे के साथ। और फिर एक दिन बैडमिंटन खेलकर विनोद खन्ना लौटे, कविता से किसी बेहद इंटेंस मोमेंट में शादी के लिए पूछ लिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कविता और वो बस यूं ही बातें करते रहें। कविता की अपनी जिंदगी थी, साथ ही विनोद की पहली शादी से 2 बच्चे भी थे, अक्षय एंड राहुल खन्ना। कविता विनोद से काफी अटैच फील कर रही थी। उन्होंने सारी दुनिया का विरोध करके अपने से उम्र में बड़े और 2 बच्चों के पिता विनोद का हाथ थाम लिया। उन्होंने विनोद को हमेशा इमोशनली और मेंटली एंथुसियास्ट माना। उनके दोनों बच्चों को दोस्त की तरह प्यार दिया। उन्होंने कोई जॉब नहीं किया। विनोद खन्ना साहब ने जब पॉलिटिक्स ज्वाइन की तब वो उनके इलेक्शन कैंपेन प्लान करती थी, क्योंकि विनोद खन्ना साहब काफी स्पॉन्टेनियस, स्ट्रेट अवे हैं। वहीं कविता बहुत ही सधी हुई, एनालिटिक और क्लियर है। हाँ, कविता को एक शिकायत है कि विनोद साहब अपनी मेडिटेशन में ज्यादा सबमर्ज यानी डूबे हुए रहते हैं, और सबसे बड़ी बात विनोद इसे स्वीकारते हैं कि उनके लिए इनर पीस काफी जरूरी है। बहरहाल, मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ यहाँ छोड़े जा रहा हूँ। करिए इंतजार। क्या सोच रहे हैं अगले एस कौन से होंगे? एस से सस्पेंस बना रहने दीजिए जनाब। लौट कर आता हूँ। मैं हूँ समर आपके साथ सिंगापुर के एकमात्र हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। आप सुन रहे हैं विनोद खन्ना की कहानी समर की जुबानी।

0: आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: लिटिल डार्लिंग द स्माइल रिटर्निंग टू द फेसेस। लिटिल डार्लिंग इट सीम्स लाइक इयर्स सिंस इट्स बीन हियर। हियर कम्स द सन एंड आई से इट्स ऑल राइट। मुझे पता है आप ये सोच रहे हैं मैं मशहूर बैंड बीटल्स का ये गाना यूं बोलकर क्यों सुना रहा हूं आपको। वेलकम बैक। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं हूं समर और आप सुन रहे हैं सिंगापुर का एकमात्र हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। दरअसल विनोद खन्ना साहब के कॉलेज फ्रेंड इस बैंड को बहुत फॉलो करते थे, बीटल्स को। इनका भी एक अपना ग्रुप था। वैसे बीटल्स का कम टुगेदर मुझे भी बहुत पसंद है, आप में से भी बहुत लोगों को होगा यकीनन। वेल, अभी मेरे पास ऐसे दो नाम है, एक तो समर मैं और दूसरा है स्वामी विनोद भारती उर्फ सेक्सी सन्यासी। जहां इसी नाम से विनोद खन्ना साहब को पुकारा जाता था। अब वो थे इतने हैंडसम, करियर की बुलंदी पर थे, अपने टाइम के अभिनेताओं के लिए वो एक बहुत बड़ी चुनौती थे, बहुत बड़ी कॉम्पिटिशन। तब वो संन्यास लेकर चले गए अमेरिका में ओशो कम्यून रजनीशपुरम में, जहां वो आश्रम में ओशो के बर्तन धोते और बागवानी करते थे। हालांकि इससे पहले ही वो ओशो के शिष्य बन चुके थे। वो अक्सर अपनी फिल्म्स की शूटिंग पुणे में रखवाया करते थे। वहां आश्रम में बहुत सारा वक्त मेडिटेशन में बिताया करते थे। इनफैक्ट हर वीकेंड वो पुणे जाया करते थे। विनोद बहुत देर तक शूटिंग पर भी सन्यासी का मैरून चोगा पहने रहते थे, एक माला भी पहने रहते थे, और काफी देर बाद वो शूटिंग कॉस्ट्यूम पहनते थे। फिर उन्होंने दीक्षा भी ले ली। उन्होंने अपने कीमती कपड़े, जूते, लग्जरी की सभी चीजें लोगों में बांट दी, विरक्त हो गए और आश्रम में रहने लगे। इधर फिल्म इंडस्ट्री में किसी को यकीन नहीं हुआ, किसी ने इसे सीरियसली नहीं लिया, अफवाह समझा। मगर जब विनोद साहब ने अपने साइनिंग अमाउंट लौटा दिए, तब सबको बहुत बड़ा धक्का पहुंचा। जब ओशो को किसी वजह से अपना पुणे आश्रम बंद करना पड़ा, तो ओशो के साथ वो भी अमेरिका चले गए। उससे पहले उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसका जिक्र हम आपसे पहले भी कर चुके हैं। हालांकि उन दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज करना इतना आसान नहीं हुआ करता था, लेकिन तब भी लोग आए और विनोद ने बिना किसी भाव के सीधे शब्दों में संन्यास की घोषणा कर दी। उनकी पत्नी गीतांजलि और दोनों बेटे वहां मौजूद थे, मानो कोई मौन स्वीकृति दे रहे हों। लेकिन ये तूफान से पहले की शांति थी। इसके कुछ ही वक्त बाद उनका अपनी वाइफ से तलाक हो गया। बहरहाल ये तो उनकी पर्सनल लाइफ थी, लेकिन इनकी फिल्मी दुनिया को जिएंगे। मैं फिर से अगले एस के साथ लौट रहा हूँ। आप इस एस के साथ एक एस और निभाइए, यानी स्टे कनेक्टेड विद सिंगापुर नंबर वन एंड ओनली हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: सुनते रहिए लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: मोहब्बत अदावत वफा बेरुखी, किराए के घर थे वो बदलते रहे। कुछ ऐसी शख्सियत को आज हम जी रहे हैं जिन्होंने कितना कुछ बदला, बदलते ही रहे। समर के साथ आप सुन रहे हैं शो लेजेंड्स, सिंगापुर के एकमात्र हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। और आज हमारे इस शो में हमारे साथ हैं विनोद खन्ना साहब, और उनके जीवन के कुछ छुए अनछुए पहलुओं को हम कोशिश कर रहे हैं एक एक करके आपके सामने लाने की। और इसके लिए हमने अपने ही अंदाज में एक लेटर लिया है एस। यूं तो एस से सुपरस्टार भी होता है, और वो तो होते भी सुपरस्टार, क्योंकि उनके प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स उनके समकक्ष अभिनेता अमिताभ बच्चन से ज्यादा उस वक्त उन्हें पसंद करते थे। वो एक्सट्रीमली गुड लुक्स वाली पर्सनैलिटी थे, लड़कियां उन पर फिदा थी और एक्टिंग तो बेमिसाल थी उनकी, मगर वो चले गए। खैर, अभी हम बात करते हैं कि शुरुआत कहां से हुई। तो हुआ यूं कि उनके जीवन में एक एस और आया। हाँ, ये थे सुनील दत्त साहब, जो अपने भाई को यानी सोम दत्त साहब को लॉन्च करने के लिए फिल्म बना रहे थे। विनोद खन्ना साहब को उन्होंने देखा और फिल्म में बतौर खलनायक एक रोल दे दिया, साइन कर लिया गया उन्हें। अब देखिए किस्मत की पलटी, इस मन का मीत नाम की फिल्म का हीरो तो चला नहीं, लेकिन विनोद खन्ना साहब की गाड़ी फर्राटा दौड़ निकली। अब संयोग की बात देखिए, जिस फिल्म ने उनके अंदर मोशन पिक्चर्स के प्रति रुचि जगाई थी वो भी ऐसे ही थी। उसका नाम था 16 साल। ये उन्होंने तब देखी जब वो नासिक के बोर्डिंग स्कूल में पढ़ रहे थे। उन्होंने वहाँ एक और फिल्म देखी थी, मुगले आजम। बस वहीं से उनके अंदर फिल्म्स में काम करने की चिंगारी जाग उठी थी। शुरुआत में उन्होंने कई फिल्म्स की जिनमें विलेन का रोल उन्हें मिला। पूरब और पश्चिम, सच्चा झूठा, आन मिलो सजना, मस्ताना, मेरा गांव मेरा देश, ऐलान। मगर उनके लुक्स उनके खलनायक वाले किरदार से मैचअप नहीं करते थे। चुनाचे वो नायक की तरह स्क्रीन पर उभर कर आए और फिल्म थी हम तुम और वो, और इसके ठीक बाद आई फिल्म मेरे अपने। हालांकि मेरे अपने एक मल्टी स्टारर फिल्म थी, लेकिन विनोद साहब को इसमें काफी पसंद किया गया। उनके इस फिल्मी सफर पर हम रोशनी डालते ही रहेंगे। फिलहाल आपको मैं थमा रहा हूँ एक बेहद खूबसूरत गीत की डोरी, जिसे थामे हुए आप बस बहते रहिए। गीत के किनारे पर मैं आपको खींच लूंगा विनोद खन्ना साहब की कहानी में, कहीं जाने नहीं दूंगा। बंधे रहिए और सुनते रहिए सिंगापुर का एकमात्र हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। मैं हूँ समर आपके साथ।

0: आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: नाना करता हुआ जग से डरता हुआ मेरा यार मेरा यार मेरा यार मेरा यार। वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं सिंगापुर का एकमात्र हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, और ये जो शो है जिसे आप सुन रहे हैं उसका नाम है लेजेंड्स। मैं हूं समर आपके साथ, और आज मेरे साथ एक बेहद स्टनिंग पर्सनैलिटी विनोद खन्ना साहब हैं। हाँ, तो हम उनकी फिल्म्स की बात कर रहे थे। क्या आपने कभी कोई हैंडसम डाकू को इमेजिन किया है? अगर नहीं तो विनोद खन्ना साहब को ले लीजिए। फिल्म मेरा गांव मेरा देश में एक बड़ा सा काला तिलक माथे पर धोती कुर्ता पहने हुए सुपरस्टार धर्मेंद्र को टक्कर देता हुआ बेहद खूबसूरत डाकू। क्या आप जानते हैं कि 40s के अभिनेता ईश्वर लाल के बाद विनोद खन्ना साहब ही थे जो खलनायक से नायक बने। उनको पहचाना गुलजार साहब ने। मेरे अपने के अलावा उन्हें गुलजार साहब ने अचानक में हीरो बनाया, जिसमें उन्होंने अपनी वाइफ का मर्डर करने वाले एक नेवी ऑफिसर का रोल किया। यू गेस्ड इट राइट, ये एक मशहूर कहानी पर आधारित फिल्म थी, और इसी कहानी का भी रीमेक बना था ना लास्ट ईयर, रुस्तम, अभिनेता अक्षय कुमार थे जिसके। फिलहाल तो हम बात कर रहे हैं विनोद खन्ना साहब की, तो उन्होंने बहुत सारे ऑफ बीट रोल और रिस्की रोल भी किए उस जमाने के हिसाब से, क्योंकि फिल्मों का एक ट्रेंड है अगर आप हटकर कोई भूमिका निभाते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है आपका चलना। अब जब मैं उनकी हटके की हुई फिल्मों की बात करूंगा तो अरुणा विकास की लो बजट फिल्म शक में मर्डर सस्पेक्ट का किरदार उन्होंने जो निभाया था उसे कोई नहीं भूल सकता। दरअसल विनोद खन्ना ने कभी भी किसी भी काम से परहेज नहीं किया, अपने आप को किसी टाइप्ड किरदार में बांधा ही नहीं। यही वजह है कि जब वो मल्टी स्टारर फिल्म भी करते थे ना तो सबका ध्यान अपनी ओर खींच ही लेते थे। 1968 से 1973 तक उन्होंने 32 फिल्म्स में काम किया, और इनमें से 12 में सपोर्टिंग रोल या नेगेटिव रोल में उन्होंने काम किया, 12 एज अ सोलो लीड हीरो के तौर पर काम किया, और 8 में मल्टी स्टार कास्ट के साथ काम किया। फिल्म कैद में उन्होंने पहली बार रोमांटिक हीरो का रोल किया। वेल, हीरोइंस के साथ तो सबकी केमिस्ट्री होती है, लेकिन बच्चन साहब के साथ हेरा फेरी, खून पसीना, अमर अकबर एंथनी, परवरिश, मुकद्दर का सिकंदर की, और सबकी सब सुपरहिट फिल्म्स। अकेले अभिनेता थे विनोद खन्ना जो अमिताभ बच्चन की बॉक्स ऑफिस पर सत्ता पलटने का जज्बा रखते थे। इधर राज खोसला साहब भी विनोद खन्ना को काफी पसंद करने लगे थे। 5 फिल्म्स की उन्होंने उनके साथ, मेरा गांव मेरा देश, कच्चे धागे, प्रेम कहानी, नहले पे दहला और मैं तुलसी तेरे आंगन की। विनोद खन्ना साहब की इनकार, कुर्बानी, हत्यारा, ये कमाल की फिल्में थी, बहुत जबरदस्त हिट रही थी। सफलता उनके लिए दरवाजे खोले उनका इंतजार कर रही थी, जैसे मैं करता हूँ आपका दोनों बाहें फैलाकर। चलिए एक बेहतरीन नगमा सुनकर आइए, मैं यही हूँ सिंगापुर के एकमात्र हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर, यूं ही दोनों बाहें खोलकर आपका इंतजार कर रहा हूँ। आज आप सुन रहे हैं विनोद खन्ना साहब की कहानी समर की जुबानी।

0: और खबर मिली है कि दुनिया में लोग फार्ट बॉटल में खरीद रहे हैं।
1: क्या लोगों के पास पैसे ज्यादा है या दिमाग कम? मस्ती मैडनेस, जहाँ न्यूज भी होती है गैस्ट्रोनॉमिकल।
2: Some invitations are simply too stylish to miss. This October, High Life Exhibition returns to Singapore, bringing you a curated world of Indian fashion and lifestyle. Discover festive wear, bridal couture, jewelry, accessories and home decor from designers across India and Singapore. 13th and 14th October, 10 a.m. to 8 p.m. at Holiday Inn Singapore, Orchard City Centre. High Life Singapore, 2 days, endless style, one destination.
3: It's a Masti Partner event.
4: आप सुन रहे हैं समर के साथ लेजेंड्स फिर से।
5: देर तक हाथ हिलाती रही शाख फिजा में, अलविदा कहने को या पास बुलाने को। हेलो जी एंड वेलकम बैक। समर कर रहा है एक बार फिर से आपका स्वागत स्वागत और स्वागत आपके पसंदीदा शो लेजेंड्स में। यह रेडियो मस्ती सिंगापुर का एकमात्र हिंदी रेडियो स्टेशन। वैसे अलविदा तो विनोद खन्ना साहब ने भी कहा था, शायद उनका ऐसे सेल्फ रियलाइजेशन ही था कि वो लौट आए। हालांकि इस बीच उन्होंने बहुत कुछ खो दिया था। वो थी उनकी वाइफ, तलाक हो चुका था, मगर बिखरे हुए अपने आशियाने को सजाने के बजाय उन्होंने अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को पाने की कोशिश की। वो फिर से अपने काम में जुट गए और पूरा इंसाफ किया अपने काम के साथ। जी हाँ, डिंपल कपाड़िया के साथ उन्होंने कमबैक मूवी की इंसाफ। ये फिल्म सुपरहिट रही। हालांकि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान भी विनोद कई दफा ओशो की तरफ मुड़े, एक महीना गायब हो गए, लेकिन फिर वो लौट आए पूरे डिटर्मिनेशन के साथ। उसके बाद फिर उनका सितारा चमका, उन्होंने कई हिट फिल्म्स दी और फिर वो लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है, कौन भूल सकता है। सफेद कुर्ता पायजामा में विनोद खन्ना क्या खूब दिख रहे थे। कैसा बारिश की फुहारों की तरह भिगोने वाला गाना है ना ये। उनकी हिट फिल्म्स रहीं सत्यमेव जयते, फैसला, महादेव, आखिरी अदालत और गुलजार साहब की लेकिन। इसके अलावा भी उन्होंने कई स्टार्स वाली फिल्म्स की, खून का कर्ज, क्षत्रिय, इंसानियत का देवता, एक था राजा एक थी रानी, क्रांति, ये भी सब हिट रहीं। उन्होंने उस वक्त के सब डायरेक्टर्स के साथ काम किया। कमल हासन की फिल्म नायकन का रीमेक दयावान सफल रही थी, लेकिन इस सितारे की चमक कुछ फीकी हो गई। इस बीच कई छिटपुट रोल उन्होंने किए। सल्लू भाई के पिता की भूमिका में विनोद खन्ना नजर आए वांटेड में, फिर दबंग और उसकी सीक्वल में, और उस चरित्र को भी उन्होंने बखूबी निभाया। मगर लौट कर आने के बाद उन्होंने अपने चारों ओर एक दीवार बना ली थी। वो मीडिया से दूर रहते थे, उनका इंटरव्यू कर पाना भी बेहद मुश्किल होता था। अभी मैं एक ब्रेक लेता हूँ, फिर से लौट कर आता हूँ दो एस के साथ, एक स्टोरी दूसरा सीरियल। कहीं जाएगा नहीं, स्टे कनेक्टेड। आप सुन रहे हैं सिंगापुर का एकमात्र हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: इस दीपावली शॉपिंग भी, सेलिब्रेशन भी और एक्साइटिंग प्राइजेस जीतने का मौका भी। Zaxxalam India The Family Expo is back with its grand 43rd edition celebrating 20 amazing years. Enjoy 10 days of Deepavali discounts, Indian shopping, delicious food, competition standya, cultural entertainment and family fun. 16th to 25th October at Hall 9, Foyer 3, Singapore Expo Mein. Entry is free, free, free. So bring your family and celebrate the spirit of India at 43rd edition of Zaxxalam India, the Family Expo. The biggest Deepavali discount sale of the year. For more info, log on to www.zaxxalamindia.com.
1: Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।

0: आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: दो लफ्जों की ये सारी कहानी, या है मोहब्बत या है जवानी। दो लफ्जों स्टोरी एंड सीरियल के साथ एक बार फिर लौट आया है आपका एक और एस समर, एक और एस के साथ, शो के साथ जिसका नाम है लेजेंड्स। एक और एस सिंगापुर को सुनाने के लिए रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर ये कहानी। मैं हूं समर, ये स्टोरी है विनोद खन्ना साहब की। कितने ट्विस्ट एंड टर्न्स आए इस कहानी में, लेकिन स्टोरी चलती रही। अच्छा, सीरियल से याद आया कि उन्होंने एक डेली सोप में भी काम किया था, नाम था मेरे अपने। इसके साथ ही उन्होंने महाराणा प्रताप का भी एक सीरियल में किरदार निभाया था। हाँ, एक और बात याद आती है, उन्होंने एक पाकिस्तानी फिल्म गॉडफादर में भी रोल प्ले किया। वेल, जब विनोद खन्ना फिल्मों में वापस लौटे तो सबसे ज्यादा खलबली मची अमिताभ बच्चन कैंप में। बच्चन साहब पूरी तरह से नंबर वन पर थे। मनमोहन देसाई कहते हैं कि उस वक्त विनोद में एक खास स्पार्क था, वो बस अपने आप को प्रूव करना चाहते थे। उस वक्त के फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर निजाम कहते हैं कि विनोद की फिल्म इंसाफ और सत्यमेव जयते ने 80% कॉस्टिंग पहले हफ्ते में ही निकाल ली थी। सलीम खान, जो अमिताभ बच्चन की फिल्म्स लिखा करते थे, बोलते हैं कि विनोद की खासियत ये थी कि जब वो गए तब वो नंबर टू की पोजीशन पर थे और जब लौटे तब भी नंबर टू पर थे। महेश भट्ट साहब कहते हैं कि ये उनकी पर्सनल लाइफ थी जिसने उनके प्रति लोगों का इंटरेस्ट जगाया। खैर, जो भी हो, विनोद खन्ना साहब खुद कहते हैं कि जब वो लौटे उस वक्त इंदिरा गांधी जी की डेथ हो गई थी और उनके फ्यूनरल के साथ ही राजीव देश के प्रधानमंत्री बन चुके थे। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसीजन था राजीव गांधी का और इसने उन्हें बहुत हौसला दिया और उनके कमबैक को सक्सेसफुल बनाया। देखिए कहां कहां से हिम्मत और इंस्पिरेशन मिलती है। वेल, अभी हम अपने अगले पड़ाव पर चलते हैं और वो है बहुत कठिन, समझ गए आप, 3 बेस्ट सॉन्ग्स आपको सुनाने हैं। एनीवे, मैं मुश्किल काम से घबराता नहीं हूँ, मैं लौट कर आऊंगा, एक से बढ़कर एक गाना चुन कर लाऊंगा। आप सुनते रहिए सिंगापुर का एकमात्र हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, जहां आज हम जी रहे हैं विनोद खन्ना साहब को, उनकी फिल्मों को, उनकी जिंदगी को।

0: तैयार हो जाइए, जब ढोल बजेगा, डांडिया थनकेगा और पूरा सिंगापुर बोलेगा It's time for Singapore Gujarati Society presents Singapore's truly original Navratri. 16th, 17th and 18th October at the new grand and stunning Laguna Ballroom, Dusit Thani Laguna. Three spectacular nights of Garba Dandiya tradition and celebration. Complimentary shuttle available too. Tickets $25 onwards almost sold out, but you can still win yours with Masti. Book now at sgs.org.sg/Navratri2026. Singapore Gujarati Society presents Singapore's truly original Navratri. Tradition, togetherness, celebration.
1: Some invitations are simply too stylish to miss. This October, High Life Exhibition returns to Singapore, bringing you a curated world of Indian fashion and lifestyle. Discover festive wear, bridal couture, jewelry, accessories and home decor from designers across India and Singapore. 13th and 14th October, 10 a.m. to 8 p.m. at Holiday Inn Singapore, Orchard City Centre. High Life Singapore, 2 days, endless style, one destination.
2: It's a Masti partner event.
3: सुनते रहिए लेजेंड्स फिर से समर के साथ
4: चाहिए थोड़ा प्यार चाहिए प्यार प्यार प्यार वेलकम बैक क्यों क्या सोच रहे हैं आप आपसे तो हमें बहुत सारा प्यार यूं भी चाहिए मैं हूं समर आप सुन रहे हैं लेजेंड्स सिंगापुर के एकमात्र हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर और आज हम बात कर रहे हैं विनोद खन्ना साहब की आज के हमारे लेजेंड वही हैं और ये जो वक्त है बड़ा ही मुश्किल होता है जिसका मैं जिक्र कर रहा था थ्री बेस्ट सॉन्ग्स चुनने हमें विनोद खन्ना साहब के तो चलिए काम पर लग जाते हैं तो ये जो गाना मैंने भी गाया ना यही था मेरा आज का पहला गाना प्यार प्यार प्यार प्यार फिल्म का नाम है लहू के दो रंग सिंगर किशोर दा और कौन जय काली कलकत्ते वाली तेरा वचन न जाए खाली बच्चा लोग बजाओ ताली मैंने मंत्र भूखा है और दूसरा गाना निकाला है प्रिय प्राणेश्वरी हृदयेश्वरी यदि आप हमें आदेश करें तो प्रेम का हम श्री गणेश करें हाँ ये मेरा पर्सनल फेवरेट है जानते हैं क्यों ऑफ कोर्स किशोर दा एंड इतनी शुद्ध हिंदी और हाँ देखने में भी बहुत मस्त है ये गाना मुझे बेहद पसंद है सच में आप भी सुनिएगा इसे और तीसरा गाना है फिर से अपने किशोर दा का और यकीन मानिए फिल्म का नाम भी है मेरे अपने बेहद खूबसूरत ट्रैक बहुत सॉफ्ट एंड बहुत ही सैड भी लेकिन फिर भी उदास लम्हों में सुकून सा देता हुआ आई लव इट्स पिक्चराइजेशन एज वेल घूमते हुए साइकिल के पहिए के बीच से झांकते विनोद साहब जैसे वक्त का पहिया घूमता हो हाँ वक्त अब ये इशारा कर रहा है कि आप ये गाना सुन लीजिए मैं इसके बाहर मिलता हूँ आपसे क्योंकि अब जाने का वक्त भी हो चला है आप हैं सिंगापुर के एकमात्र हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर अपने समर के साथ जहाँ चल रही है विनोद खन्ना साहब की बात

0: सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: वेलकम बैक, आप हैं समर के साथ। और आखिर में जो मैं आज अपने शो पर एस लेकर आया हूँ, उससे शब्द बनता है सदगुरु। आप सोचेंगे शो का नाम है लेजेंड्स और समर अध्यात्म की बात कर रहा है। जब आया था तब भी ओशो की टीचिंग लेकर आया था, जाते जाते भी ऐसी कुछ बात कर रहा है। भाई क्या कीजिएगा, ये है सिंगापुर का एकमात्र हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, और आपका पसंदीदा शो है ये लेजेंड्स। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपसे आज अच्छी अच्छी बातें की जाएं। वेल फिलहाल तो मैं आपको ये बता दूं कि हमने आज विनोद खन्ना साहब की जिंदगी को जिया, और जब मैं अध्यात्म की बात करता हूं तो हां ये सच है, क्योंकि आज हम जिस शख्स को जी रहे हैं ना, उनकी यही फिलॉसफी रही है, अपनी जिंदगी को किसी गुरु के प्रति समर्पित कर देना। कितना कुछ खोया लेकिन फिर भी अपने लिए जिया। इनके बेटे अक्षय खन्ना, जो बॉलीवुड एक्टर भी हैं, जब उनसे पूछा गया कि उन्हें कैसा लगा जब पापा विनोद उनको छोड़कर ओशो से जुड़ गए थे, उस वक्त वो महज 5 साल के थे, तो अक्षय कहते हैं कि हर किसी को अपना जीवन अपनी तरह जीने का अधिकार है, और उनके पिता ने यही किया, उन्होंने अपनी खुशी को चुना। इफ यू आर नॉट हैप्पी देन यू कैन नॉट मेक पीपल हैप्पी अराउंड यू। वेल बात तो सही है, कई लोग कई तरह की बातें करते हैं विनोद खन्ना साहब के बारे में। विनोद साहब की स्पिरिचुअल इंस्टिंक्ट को अलग अलग तरह से लिया जाता है, लेकिन एक बार एक इंटरव्यू में उन्हें बुलाकर कहा गया कि वी आर प्राउड ऑफ यू, तो वो बोले आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। दिस इज द स्पिरिट जिसने उन्हें सफलता असफलता और सफलता के बीच जिलाए रखा। और चलते चलते उन्हीं के अंदाज में उन्हीं का पसंदीदा कबीर दास जी का दोहा आपको सुना देता हूँ। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष, गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिले न दोष। आप बस यूं ही सुनते रहिएगा सिंगापुर का एकमात्र हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। अभी जाने का वक्त है, दीजिए इजाजत, एक और लेजेंड से मुखातिब होंगे, उसके बेहतरीन नगमे आपको सुनाएंगे, लेकिन तब तक टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड पीपल अराउंड यू। नमस्कार, बाय बाय।

0: नाचने का मन है।
1: मेरा भी। आपके रिक्वेस्ट ही बनाएंगे शो को फुल ऑन पार्टी। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 3 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore. Check it out.
3: रात अकेली है
4: तो क्या हम तो

0: रात अकेली है तो क्या, हम तो आपके साथ हैं।
1: जोश में रहो।
2: और कहीं कोई चाहता है 105 बच्चे?
3: बेबी बूम नहीं, बेबी सुनामी। क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो। दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
1: जोश में रहो।
0: रात अकेली है तो क्या, हम तो आप

सा रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, कैसे देखूं तेरी आंखें, आंखों पे चश्मे का पहरा। ये चांद सा रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, कैसे देखूं तेरी आंखें, आंखों

संभल, अरे लोग मुझे क्यों देते हैं ताना। हाँ मैं हूँ बीवी का दीवाना। अरे तो क्या हुआ।

0: जादू है नशा है और गानों से मदहोश करने के लिए हम है ना
1: रात।

नए दिन की शुरुआत शांति और श्रद्धा के साथ, भक्ति प्रेरणा और सुकून भरे गीत सुनिए रेडियो मस्ती 24/7 पर मस्ती पे भक्ति सुबह 6 बजे।

की पहली रोशनी के साथ अपने मन को भक्ति और प्रेरणा से रोशन कीजिए। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।

हर सुबह एक नई शुरुआत है, मन में शांति हो तो दिन अपने आप सुंदर बन जाता है। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति, रेडियो मस्ती 24/7 पर।

तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। फोकस ऑन डूइंग योर ड्यूटी विदाउट बीइंग अटैच्ड टू द रिजल्ट्स।

हर सुबह एक नई शुरुआत है, मन में शांति हो तो दिन अपने आप सुंदर बन जाता है। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति, रेडियो मस्ती 24/7 पर।

पहली रोशनी के साथ अपने मन को भक्ति और प्रेरणा से रोशन कीजिए। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।

0: सभासद इति।
1: तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। फोकस ऑन डूइंग योर ड्यूटी विदाउट बीइंग अटैच्ड टू द रिजल्ट्स।

0: जोर सुन टकाटक।
1: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
0: जोश में रहो।
1: दो ही वजह हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको दिन छोटा लगने लगे। या तो आप बहुत खुश हैं या आप बहुत मायूस हैं। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं आपकी आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर वंस अगेन जुड़ चुकी है। एंड यू नो व्हाट, मुझे अच्छा लगता है जब लोग ये बोलते हैं कि उनके पास वक्त नहीं है वक्त देखने का, पूरा दिन कैसे निकल जाता है यार, पता ही नहीं चलता। हाँ, सो पॉजिटिवली नेगेटिवली आपका दिन निकलता जा रहा है, आप बहुत ज्यादा भारी महसूस नहीं कर रहे हैं तो भी अच्छा है यार। स्लो मोशन में सिर्फ जीवन ही नहीं मूवी भी नहीं अच्छी लगती है यार। सो जो चल रहा है चलने दो, आने वाले दिनों को एंजॉय करो। एंड सिंगापुर में फेस्टिव डेज को कैसे एंजॉय कर सकते हो, ये बातें तो सिंगापुर वालों को हम सजेस्ट करते ही रहते हैं। हाँ, लेकिन देखो स्लो मोशन में गाने भी अच्छे नहीं लगते है ना, इसीलिए बढ़िया बढ़िया फास्ट एंड फास्ट वाले जो गाने हैं ना आपको डेफिनेटली रेडियो मस्ती पर मेरे यानी आरजे नुपुर के साथ मिलेंगे। बहुत सारे आइडियाज भी मिलेंगे और वो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज जिनकी वजह से भाई पूरी इंडस्ट्री हिली हुई है, आग सी लग गई है, बताती हूँ इन अ शॉर्ट वाइल। डोंट गो एनीवेयर, आती हूँ मैं।

0: दीपावली शॉपिंग भी, सेलिब्रेशन भी और एक्साइटिंग प्राइजेस जीतने का मौका भी। Zaxxon India, the Family Expo is back with its grand 43rd edition, celebrating 20 amazing years. Enjoy 10 days of Deepavali discounts, Indian shopping, delicious food, competition standya, cultural entertainment and family fun. 16th to 25th October at Hall 9, Foyer 3, Singapore Expo Mein. Entry is free, free, free. So bring your family and celebrate the spirit of India at 43rd edition of Zaxxon India, the Family Expo. The biggest Deepavali discount sale of the year. For more info, log on to www.zaxxonindia.com.
1: जापान में रोती हुई औरतों को मिलते हैं हैंडसम हग करने वाले बॉयज।
2: वाओ, हमारे यहाँ तो बस बेटा रो मत
3: ये मिलता है, यहाँ मिलते हैं दो करारे थप्पड़।
0: This is Masti Madness on Radio Masti 24/7.

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर।
1: नुपुर, नुपुर, नुपुर, नुपुर, नुपुर, नुपुर,
2: नुपुर,
0: पुराने जमाने में एक गाना आया था, खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों, इस दुनिया से नहीं डरेंगे हम दोनों। अब देखो ये वाला जो लाइफ में स्टेज है, ये पता है कब आता है, जब आपकी शादी एकदम फिक्स हो जाती है, आपके जो रिलेटिव्स हैं, आपके जो पेरेंट्स हैं, वो आपके बंदे को या बंदी को एक्सेप्ट कर चुके होते हैं, तब आप खुल्लम खुल्ला मोड पे आ जाते हैं। लेकिन सेलिब्रिटीज में ये फेज ना बहुत जल्दी आ जाता है यार, बहुत जल्दी आ जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, जानवी कपूर, इन्होंने अपनी रिलेशनशिप अभी तक कंफर्म नहीं करी है, लेकिन जिस तरह से इनके बॉयफ्रेंड की नजदीकियां इनके घर वालों से है, तो ऑलमोस्ट चीजें कंफर्म है। और रिसेंटली ये फ्लाइट में थी और इनकी जो टी शर्ट थी ना, उसमें पता है क्या लिखा हुआ था, तौबा तौबा तौबा, उसमें लिखा हुआ था, इफ लॉस्ट कॉमा प्लीज रिटर्न टू शिखर पहाड़िया। तो मतलब अपने बॉयफ्रेंड का नाम अपनी टी शर्ट पे लिखना और समथिंग समथिंग लाइक दैट, खुल्लम खुल्ला प्यार दिखाना, ये सेलिब्रिटीज ही है जो बेंच मार्क सेट करते जा रहे हैं, है ना। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं आज यू पर आपके साथ, डोंट गो एनीवेयर, मेरी जान, आती हूँ मैं इन अ शॉर्ट वाइल।
3: We are Radio Masti 24/7 Live, keeping you connected Bollywood style, anywhere, anytime.

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
3: आज प्यार की हो डील।
4: डील बोले तो
5: हार्ट हार्ट
6: हमारा यार सौदा सौदा।
4: ओहो
3: दोनों डील कर सील।
4: टाइट, टाइट, वेरी टाइट।

0: सुर सुन टकाटक।
1: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
2: जोश में रहो।
1: मुझे लग रहा है बहुत सारी सिटीज के ना पर निकल आए हैं। हाँ जी, तभी तो उड़कर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, जयपुर, कोलकाता, हैदराबाद, कश्मीर, पंजाब और क्या कुछ नहीं आने वाला है, सिंगापुर। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा भी क्या है यार, हाँ? चलो बता देती हूँ। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं आरजे रुपड़ आपके साथ इस बार 43rd एडिशन में जैक सलाम इंडिया द फैमिली एक्सपो में आपको ये सारे शहरों के फ्लेवर्स मिलने वाले हैं। हाँ जी, आपको लाइफ स्टाइल से लेकर एंड वहाँ के क्यूरेटेड स्वीट से लेकर बहुत सारी चीजें जो कि पॉसिबली यहाँ पे आ सकती है, वो सब कुछ मिलने वाला है। तो ये वो एग्जीबिशन है जिसका आप इंतजार करते हैं। दिवाली बिगेस्ट डिस्काउंट सेल आपको मिलेगी और अगर आप लकी रहे तो आपको मोबाइल फोन्स, क्रूज ट्रिप या फिर दुबई, लंदन, पेरिस, रोम या न्यूयॉर्क जाने का मौका, बहुत सारे कॉम्पिटिशन जैसे कुकिंग कॉम्पिटिशन, कैरम कॉम्पिटिशन, रंगोली, डांडिया, जैक कम्युनिटी अवार्ड, दीपावली सेलिब्रेशन, सब कुछ मिलेगा अंडर वन। आपको पहुंचना है 16th to 25th October। हाँ जी, आपको 10 दिन दिए जा रहे हैं। हॉल 9 फॉयर 3 सिंगापुर एक्सपो, डेफिनेटली फ्री एंट्री है। आप एंजॉय कर सकते हैं अपने फैमिली का मी टाइम, फैमिली टाइम एंजॉय कर सकते हैं। मैं आरजे अनुपम, मस्ती मॉर्निंग शो पर।

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर
1: नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर सुन टकाटक जोश में
2: देखो धीरे धीरे से हर छोटे से छोटे सोशल मीडिया के कमिटमेंट्स स्टेटमेंट्स पूरी दुनिया को पता चल जाते हैं। क्यों? क्योंकि यार आग लगने के लिए छोटी सी चिंगारी ही बहुत होती है। हाँ एनीवेज बहुत सारे लोगों के जो करियर है वो सोशल मीडिया की वजह से बन गए हैं और बहुत सारे लोगों के जो करियर हैं वो सोशल मीडिया की वजह से बिगड़ गए हैं। एनीवेज रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं आरजे नुपुर आपके साथ मस्ती मॉर्निंग शो पर आपको बताना चाहेगी राजपाल यादव और उनका करोड़ का बाउंस चेक जो है वो अभी भी एक ऐसा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है जिसकी वजह से उनकी बॉलीवुड में वापसी नहीं हो सकती है। मतलब जो भी करोड़ का लॉस है उसके जो चेक का अमाउंट है इन्होंने अभी तक पे नहीं किया है। तो चेक बाउंस के केस में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राजपाल यादव को लास्ट चांस दिया जा रहा है। अगर उन्होंने अमाउंट जो है आई थिंक 2 करोड़ समथिंग है ना ये डिपॉजिट नहीं कराए तो उन्हें भाई ऑफकोर्स अरेस्ट कर लिया जाएगा। लास्ट चांस दी जा रही है। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं आरजे नुपुर आपके साथ। डोंट गो एनीवेयर मेरी जान।